ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों की प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आरंभ में सुनिए समूह स्वर में ये मात्र वंदना। रचना है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की।

समूह स्वर में मातृ वंदना अभी आपने सुनी और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब सुनते हैं मास्टर हबीब निजाम साहब की आवाज में ये हम्द ओ सना।

0: मास्टर निज़ाम,
1: मास्टर हबीब निज़ाम और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने भक्ति रचना सुनी। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब सुनते हैं इकबाल अफजल और साथियों की आवाज़ों में ये कलाम।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में सभी श्रोताओं का स्वागत है और अब से थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ भूले बिसरे गीत। पुराने जमाने के ये खूबसूरत फिल्मी तराने आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और सुबह 7 आप सुनेंगे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। सुबह 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से और सुबह 7:20 पर सुनेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। महात्मा गांधी की आत्मकथा का धारावाहिक वाचन आप सुनेंगे सुबह 7:45 पर। कार्यक्रम होगा गांधी चर्चा और सुबह 8 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर हमारे स्टूडियो से और सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे रूपक बरसो ज्योतिर्मय जीवन। सुबह 9 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह 10:05 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता और सुबह 10:30 पर सुनेगा फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 11 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्ज और लम्हे। शाम 5:35 पर सुनेगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी नगमे और शाम 6:45 पर सुनेगा बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। हिंदी में समाचार शाम 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और शाम

7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 7:30 पर सुनेगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आकाशवाणी मध्य प्रदेश। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और रात्रि 8:20 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे सुनहरी यादें। आकाशवाणी के 90 बरस के मेहमान आपको बता दें रात्रि 8:20 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे सुनहरी यादें आकाशवाणी के 90 बरस। आमंत्रित मेहमान होंगे महेंद्र कुमार त्रिवेदी। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ।

रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरित मानस का संगीत में पाठ अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सबसे पहले इस कार्यक्रम में सुनते हैं शमशाद बेगम की आवाज में बहजाद लखनवी का लिखा गीत, संगीत राम गांगुली का, फिल्म का नाम है आग।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं देवदास फिल्म से ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की, अल्फाज साहिर लुधियानवी के, संगीत एस टी बर्मन का।

0: देखो खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं यहूदी फिल्म से ये गीत, आवाज मुकेश की, अल्फाज शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने मुकेश की आवाज़ में यहूदी फिल्म से ये गीत सुना और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।

0: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 38 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायां अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह।

सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें हमारा नमस्कार। श्रोताओ, बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि परखना मत, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। इन अल्फाजों के माध्यम से बशीर बद्र साहब ने ये बात समझाने की कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा सोचने परखने से अपनापन ख़त्म हो जाता है। जब हम किसी को हद से ज़्यादा आज़माते हैं तो कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ हमारे रिश्ते की सहजता और मिठास कम हो जाती है। श्रोताओ, दरअसल ज़्यादातर इंसान अपने साथ वालों को बहुत ज़्यादा परखने के चक्कर में रिश्ते की खूबसूरती को ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि जब हम किसी को परखते हैं तो कहीं ना कहीं वो कसौटी हमारी होती है। और हम सब इंसान हैं, जब हम में खुद इतनी कमियां हैं तो दूसरों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान फरिश्ता सिफत हो। जब हम बहुत ज़्यादा अपने बनाए हुए मापदंडों पर किसी इंसान को रखते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान की खूबियों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उसकी खामियों को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक तरीके की उपेक्षा होती है, और जिस इंसान की उपेक्षा हम करते हैं उस वक्त आप सोचिए सामने वाले के दिल पर क्या गुजरते होगे। आप खुद सोचिए, जब जिंदगी में कोई इंसान आपकी उपेक्षा करते हुए भी ये अपेक्षा रखे कि इस इंसान का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो आपको कैसा लगेगा। पर इंसानी फितरत कुछ ऐसी होती है कि सामने वाले को हम कितना जलील कर लें, पर किसी ने हमारी कोई खामी उजागर कर दी तो फिर हमारी नींद भी गायब और हमारा चैन भी उछल, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को मुकम्मल मान चुके होते हैं और इसलिए हमें सामने वाला अधूरा ही नज़र आता है। लेकिन ये सोच बहुत कमतर सोच होती है, क्योंकि हम दूसरों को आईना दिखाने के लिए तो बेकरार रहते हैं, पर जब कभी उस आईने में हमारा चेहरा नज़र आता है तो हम घबरा जाते हैं कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। लेकिन श्रोताओं, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि दुनिया का हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमतरी का शिकार है। अगर हम सामने वाले की सिर्फ कमियों को देखेंगे, उसकी खूबियों को नज़रअंदाज करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं उदास और बोझल

हो जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में लोगों को बहुत ज़्यादा मत परखिए, हर इंसान को अपने जैसा समझिए, फिर आपको समझ आएगा कि ये ज़िंदगी कितने खूबसूरत है। और जैसे आज की बात हमने जो शुरू की थी वो बशीर बद्र साहब के इसी शेर से ना, कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और आगे बशीर बद्र साहब ये भी फरमाते हैं कि मोहब्बत एक खुशबू है, मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी कभी तन्हा नहीं रहता। सुबह सुबह में आज बस इतना ही।

0: श्रोताओं का एक सूचना सुनिए। कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागर से प्राप्त ये सूचना है, दिनांक 29 मई 2026 को सुबह 11 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सागर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सैनिक व उनके परिजन इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है मूंग की उन्नत खेती। जानकारी दे रहे हैं आरडी चौबे।
1: मुनगा का जो बीज का अंकुरण है 3 से लेके 20 दिन के बीच में हो जाता है। पौधे हमारे 4 से 6 इंच की हो जाएं तो उनको उठाकर हम पैकेट से सीधे जहां गड्ढे हमने तैयार किए उन गड्ढों में रोपित करें। रोपित करने के बाद उनको चारों तरफ अच्छे से मिट्टी से दबा दें और कोशिश करें कि यदि आपके पास ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था है तो उसमें ड्रिप सिंचाई की लाइनें बिछवा दें उसमें, और यदि पानी नहीं गिर रहा है बारिश के मौसम में भी तो पानी अवश्य दें। और कोशिश ये करें कि जैसे ही हमारा पौधा 2 से 3 फीट का होता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि 3 फीट ऊपर होने के साथ ही उसको किसी तेज धार वाले कैंची से या उसके उसको जो मेन तना ऊपर जा रहा है उसको काट दें। उससे क्या होगा कि जो पत्ते में अच्छी ब्रांचिंग होगी और पौधा घना होगा। घना होने से क्या होगा कि जब ब्रांचिंग अच्छी होगी तो फल भी अच्छे आएंगे। तो प्रथम साल तो उसका लगभग 6 से 8 महीने में फलन शुरू होता है और साल में 2 बार हम इसकी फसल ले सकते हैं। एक पौधे से लगभग जब उत्पादन 2 साल बाद शुरू होता है अच्छा, तो प्रति पौधे से 200 से 300 किलो फलियां हम ले सकते हैं प्रति पौधे के हिसाब से। और यदि हम 5-6 साल बाद अच्छा का उत्पादन लेना चाहें तो 500 किलोग्राम प्रति पौधे तक फलियां आ सकती हैं। तो ये मान के चलिए कि जो हमारी आर्थिक यदि उसका विश्लेषण करें हम तो लगभग 4 से 6 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम किसान भाई हमारे इससे उत्पादन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें खास बात यह भी है कि इसके पौधे में एक खास बात यह है कि ये इसकी पत्तियां भी काम आती हैं, इसके फल भी काम आते हैं, इसकी जड़ भी काम आती है, इसके फूल भी काम आते हैं और इसके तने भी काम आते हैं। तो ये ऐसा पौधा है कि जिसके हर अंग उपयोगी है। तो जैसे पत्तियों की जहां तक बात करें, जिन किसान भाइयों को पत्तियों का उपयोग करके खेती करना है कि पत्तियां बेचना है उन्हें, तो 70 से 80 रुपए किलो पत्तियां उनकी सुखाने के बाद बिक जाती हैं। बसरते सुखाने में हमें ये ध्यान रखना है कि दूसरे पौधों की पत्तियां उसमें मिक्स ना हो जाएं और उसमें गंदगी या धूल आदि ना हो। और यदि आप चाहो कि हम खेती भी करें और उसकी प्रोसेस भी करें तो पल्पलाइजर आते हैं मुनगा के पाउडर बनाने के लिए, उन पल्पलाइजर को घर पे लगा के आप उससे पाउडर तैयार करके बेच सकते हैं। और पाउडर की जो बिक्री हो रही है वर्तमान में उसकी काफ़ी डिमांड है। USA या अरब कंट्रीज में ऐसे मुनगे का पाउडर लगभग 800 रुपये से 1000 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। तो यदि चाहते हैं कि हम घर के सदस्यों को रोजगार दें तो वो मुनगा की खेती करके और खुद भी उगाएं और फलियां भी उगाएं, पत्तियां भी उगाएं, जड़ फूल सब उसको बिक्रय करके आप अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकते हैं, किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और लगभग 10 से 12 साल तक आप ये आमदनी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं हमें इस फसल को बदल देना है तो आप उसको अलग करके दूसरी फसल फिर लगा सकते हैं। और इंटरक्रॉपिंग के रूप में जहां बीच में जो जगह है 3 मीटर की बताई हमने आपको, इसके बीच में हम पपीता लगा दो आप या किसी प्रकार की सब्जियां लगाना चाहते हैं। अभी जैसे मुनगा के साथ साथ आप हल्दी की खेती कर दीजिए, हल्दी भी बढ़िया आराम से इसमें हो जाती है क्योंकि हल्दी के पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनको छाया की आवश्यकता होती है तो मुनगा की छाया भी पर्याप्त है। तो कहने का आशा है

0: एक पौधा अनेक गुणों के साथ, इसमें विटामिन सी भी होता है, प्रोटीन भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, दूध से 7 गुना प्रोटीन पाया जाता है, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें। और इसकी आजकल बहुत सारी संस्थाएं इसकी बिक्री करके इसके पराठे बना रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रति सप्ताह हफ्ते में 2 बार मुनगा के पराठों का उपयोग कर रहे हैं, इसके पापड़ बनाए जा रहे हैं, इसकी चाय बनाई जाती है, इसका पाउडर तैयार किया जाता है, इसका अचार बनाया जाता है, इसकी बड़ी बनाई जाती है। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इससे हम उपयोग न कर सकें। और एक और, हमारे मध्य प्रदेश शासन ने कुछ जिलों को चिन्हित किया है जहाँ कुपोषित जो बच्चे हैं उनको मुनगे का सूप बना के या मुनगे का लिक्विड बना के उन पर प्रयोग किया जा रहा है। यदि वो प्रयोग सफल रहता है तो पूरे मध्य प्रदेश में आगामी वर्षों में मुनगा की जो पेय पदार्थ हैं उनके बारे में काफी अच्छा काम होगा।
1: मुनगा की उन्नत खेती, इस विषय पर रोचक जानकारी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत में RD24 से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों की प्रतीक्षा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजाति समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के दा नांग में आयोजित 2026 अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्रीस्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते। उन्होंने बताया कि पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने 4 स्वर्ण पदकों सहित 9 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, जो कि चैंपियनशिप के इतिहास में देश के अब तक के सर्वाधिक पदक हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि महिला कुश्ती दल ने भी 6 स्वर्ण पदकों के सहित 10 पदक जीतकर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मास्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ हैं या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। मध्य प्रदेश ने देश भर में किसानों से सर्वाधिक गेहूं खरीदने का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 13,46,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 1,03,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके साथ ही राज्य ने जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान हासिल किया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश में 2,00,000 से अधिक जल संरचनाओं पर काम किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं खरीदी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि
1: देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का कार्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। 13,46,000 से ज्यादा किसानों ने जिनका पंजीयन हुआ था उनके माध्यम से 1,03,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी हमारे द्वारा की गई। ये पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य द्वारा किसानों से सर्वाधिक खरीदी का हमारा अपना रिकॉर्ड है, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को हमने तोड़कर बनाया।
0: भोपाल में त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरबाला सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई की मुख्य सूचना अधिकारी ने बताया कि भोपाल स्थित घर में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ और जांच के बाद सीबीआई ने गिरबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत बुधवार 27 मई को रद्द कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए उन्हें राहत देना उचित नहीं था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी, मितव्ययिता और सुशासन के मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में एक नई कार्य संस्कृति स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा प्रशासनिक खर्चों में संयम और संसाधनों के संतुलित उपयोग को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल अपने काफिले में वाहनों की संख्या को सीमित करते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक ही बस में सवार होकर इंदौर से उज्जैन तक की यात्रा की। इस दौरान सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्था के लिए केवल 3 अन्य वाहन ही साथ रहे। विदिशा जिले की सशक्त वाहिनी युवनी शिवानी रघुवंशी की सूझबूझ और संवेदनशीलता के चलते एक सराहनीय पहल हुई है। बिहार में अपने घर से भटककर विदिशा पहुंचकर इधर उधर घूम रही एक मासूम बच्ची को देखकर शिवानी ने तत्काल जिला प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद मासूम को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया गया। गौरतलब है कि विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता के द्वारा सशक्त वाहिनी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सजग बनाया जा रहा है। अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 12वीं पास और न्यूनतम 18 वर्ष की युवतियों को प्रतियोगी परीक्षाओं विशेषकर पुलिस भर्ती के लिए तैयार किया जाता है, जिसके तहत बालिकाओं को प्रतिदिन 2 घंटे की निःशुल्क लिखित कोचिंग और पुलिस लाइन में 1 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के साथ पोषण आहार भी प्रदान किया जाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान जबलपुर में सबसे तेज 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान खजुराहो और नौगांव में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजगढ़, रीवा और दतिया सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। आज ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कलां, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और भिंड जिलों में तीव्र लू के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की और वज्रपात का अलर्ट है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और गुना सहित अन्य जिलों में लू और गर्म रात का असर बना रह सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक 31 मई को नवीन मांगलिक भवन में आयोजित की जाएगी। शिवपुरी जिले में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण एवं वितरण शिविर का आयोजन 31 मई तक किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में रात्रिकालीन कैंप लगाकर वन पट्टाधारी किसानों को ई विकास प्रणाली में पंजीयन किया जा रहा है। धार जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ऐतिहासिक मुंज सागर तालाब में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SDERF, होमगार्ड और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने तालाब परिसर से कचरा और खरपतवार हटाकर स्वच्छता का संकल्प लिया। डिंडौरी जिले में किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण देने के लिए 30 जून तक किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर जिले में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने NHAI के निर्माणाधीन इंदौर राघवगढ़ सड़क का निरीक्षण किया। भोपाल में नगर निगम के द्वारा स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 91 स्थानों से पानी के नमूने लेकर जांच करवाई जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो आज और कल मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। और पन्ना जिले के देवेंद्र नगर रेंज के अंतर्गत जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई मां और बेटी

भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। पेश है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सुनते हैं पहली फरमाइश। ये सबसे पहली फरमाइश है, भेजी है व्हाट्सएप पर, ग्राम बनेगा तहसील बंडा जिला सागर से बलराम सैन, अरविंद सैन, रेखा सैन, रविंद्र सैन, संगीता सैन, महेंद्र सैन, रामदेवी सैन, सुरेंद्र सैन, नंदिनी सैन, रिया, गौरव, राज आर्यन, कौशल और दीप्ति। इसी गीत की फरमाइश की है रश्मि झरना भरत कुमार ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। जमशेदपुर से इस गीत की, जमशेदपुर झारखंड से सुनना चाहते हैं, जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी, देवेन और इनके सभी परिजन। आप सभी सुनना चाहते हैं हम भी इंसान हैं फिल्म से ये गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज़ की, शब्द रचना समीर की, संगीत बप्पी लहरी का।

जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जब हर सेकंड
2: कार्यक्रम मंच है गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश की हमारे इन श्रोताओं ने, ये सभी सुनना चाहते हैं माशूक फिल्म से ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में, शब्द रचना इंदिवर की, संगीत श्याम सुंदर का। फरमाइश आप सभी की। धर्मश्री मंगलधाम कॉलोनी से श्याम रैक्वार, लक्ष्मी, खुशबू, वंदना, टक्कू, भूमि, दक्ष, विराज, विक्रम, बादल, हल्ले और विनय रैक्वार। परसोरिया सागर से सुनना चाहते हैं शंकर, जावेद पठान, गोविंद, राजा, रानू जैन, हरिदास, नीरज, दारा सिंह, माखन और समस्त ग्रामवासी। सारनी जिला बैतूल से फरमाइश की है अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव निम्बालकर, संदीप पाटिल। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कुमार सानू की आवाज़ में इंदिवर का लिखा गीत फिल्म माशूक से।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: कार्यक्रम मंचाय गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए अब सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरसान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। कस्बा गुन्नौर से सुनना चाहते हैं फारूख अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। भूट चौराहा बुलंदशहर से फरमाइश की है पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह ने। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है धरती, संगीत है शंकर जयकिशन का।

अभी धरती फिल्म में आपने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को सुना और इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

0: सुनिए। दिनांक 29 मई 2026 को सुबह 11 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सागर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सैनिक व उनके परिजन इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:45 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का धारावाहिक वाचन।

नमस्कार, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। अभी तक आपने सुना, वल्लभ भाई पटेल म्यूनिसिपलिटी में काम खोज रहे थे, पर वहां कुछ काम मिलने की संभावना ना थी। आश्रम की बुनाई शाला में रेत का भराव करने की जरूरत थी, मगर लाल गांधी ने मुझे सुझाया कि इस काम में बहुत से मजदूर लगाए जा सकते हैं। मजदूर इसे करने को तैयार हो गए। अनसुईया बहन ने पहले टोकरी उठाई और नदी में रेत की टोकरियां ढोने वाले मजदूरों की एक कतार खड़ी हो गई। वो दृश्य देखने योग्य था। मजदूरों में नया बल आ गया। उन्हें पैसे चुकाने वाले चुकाते चुकाते थक गए। इस उपवास में एक दोष था। मैं ऊपर लिख चुका हूं कि मालिकों के साथ मेरा मीठा संबंध था, इसलिए उन पर उपवास का प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता था। मैं तो जानता ही था कि सत्याग्रही के नाते मैं उनके विरुद्ध उपवास कर ही नहीं सकता। उन पर कोई प्रभाव पड़े तो वो मजदूरों की हड़ताल का ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायश्चित उनके दोषों के लिए नहीं था, मजदूरों के दोष के निमित्त से था। मैं मजदूरों का प्रतिनिधि था, इसलिए उनके दोषों से मैं दोषित होता था। मालिकों से तो मैं केवल विनिति कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना उन पर जाति करने के समान था। फिर भी मैं जानता था कि मेरे उपवास का प्रभाव उन पर पड़े बिना रहेगा ही नहीं। प्रभाव पड़ा भी, किंतु मैं अपने उपवास को रोक नहीं सकता था। मैंने स्पष्ट देखा कि ऐसा दोषमय उपवास करना मेरा धर्म है। और अब इससे आगे मैंने मालिकों को समझाया, मेरे उपवास के कारण आपको अपना मार्ग छोड़ने की तनिक भी जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे कड़वे मीठे ताने भी दिए, उन्हें वैसा करने का अधिकार था। सेठ अंबालाल इस हड़ताल के विरुद्ध दृढ़ रहने वालों में अग्रणी थे। उनकी दृढ़ता आश्चर्यजनक थी। उनकी निष्कपटता भी मुझे उतनी ही पसंद आई। उनसे लड़ना मुझे प्रिय लगा। उनके जैसे अगवा जिस विरोधी दल में थे, उस पर उपवास का पड़ने वाला अप्रत्यक्ष प्रभाव मुझे अखरा। फिर उनकी धर्मपत्नी सरला देवी का मेरे प्रति सगी बहन जैसा प्रेम था। मेरे उपनाम से उन्हें जो घबराहट होती थी, वो मुझसे देखी नहीं जाती थी। मेरे पहले उपवास में अनसुईया बहन दूसरे कई मित्र और मजदूर साथी बने। उन्हें अधिक उपवास ना करने के लिए मैं

मजदूरों को सलाह दी थी, आपको हमेशा मिस्टर गांधी जैसा कहें वैसा करना चाहिए। इस घटना के बाद तुरंत ही मुझे इन्हीं कमिश्नर से लड़ना पड़ा था। समय बदलना चाहिए, वे भी बदल गए और खेड़ा पाटीदारों को मेरी सलाह ना मानने की बात कहने लगे। यहां एक दिलचस्प और करुणाजनक घटना उल्लेख करना उचित जान पड़ता है। मालिकों की बनवाई हुई मिठाई बहुत ज्यादा थी और सवाल ये खड़ा हो गया था कि वो हजारों मजदूरों में कैसे बांटी जाए। जिस पेड़ की छायातल से मजदूरों ने प्रतिज्ञा की थी वहीं उसे बांटना उचित है ये सोचकर, और दूसरी जगह हजारों मजदूरों को इकट्ठा करना कष्टप्रद होगा ये समझकर पेड़ के आसपास खुले मैदान में बांटने का निश्चय हुआ था। अपने भोलेपन के कारण मैंने ये मान लिया था कि 21 दिन तक नियम में रहे हुए मजदूर बिना प्रयत्न के कतार में खड़े होकर मिठाई ले लेंगे और अधीर बनकर उस पर टूट न पड़ेंगे। पर मैदान में बांटने की 2-3 रीतियां आजमाई गईं और वे विफल हुई। 2-3 मिनट काम ढंग से चलता और फिर तुरंत बंधी कतार टूट जाती। मजदूरों के नेताओं ने खूब कोशिश की पर वो व्यर्थ सिद्ध हुई। अंत में भीड़, कोलाहल और छीना छपटी यहां तक बढ़ गई कि कुछ मिठाई कुचलकर बर्बाद हो गई। मैदान में बांटना बंद करना पड़ा और बची हुई मिठाइयों को मुश्किल से बचाकर सेठ अंबालाल मिर्जापुर वालों के बंगले पर पहुंचाया जा सका। दूसरे दिन ये मिठाई बंगले के मैदान में ही बांटनी पड़ी। तो अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन, और आइए अब सुनते हैं ये भजन।

महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग का धारावाहिक वाचन अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। दिनांक 29 मई 2026 को सुबह 11 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सागर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सैनिक व उनके परिजन इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: वाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
6: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी। और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
5: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
6: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ

0: खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

0: आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगिरी में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने CBSE प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है। जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में

0: मेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं देवी सिंह राजपूत का गाया ये दादरा।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
2: कार्यक्रम लोक संगीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राम सिंह राय का गाया ये जल बचत पर बुंदेली गीत।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: कार्यक्रम लोक संगीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं रमेश बाबू सोनी का गाया ये हास्य गीत।

साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगा हर्ट्ज पर।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए रूपक, बरसो ज्योतिर्मय जीवन। इस रूपक की प्रस्तुति है डॉक्टर संजय सिंह की।

0: आधुनिक हिंदी साहित्य में कवि सुमित्रा नंदन पंत का आविर्भाव वासंती चंद्रमा के रूप में हुआ था। कवि ने अपने स्निग्ध कोमल स्वभाव से एक ओर कविता में प्रकृति का मार्दव बिखेरा तो दूसरी ओर मन की प्रसुप्त शक्तियों को कविता के आंचल में बड़ी बारीकी से टांक दिया। खड़ी बोली में जब छायावाद का प्रभाव पूरे उबाल पर था तब उनकी कविता सबसे आगे थी।
1: पंत में कला का स्थान सबसे ऊपर है, शब्दों की कला, छंद की, लय की, ये कला पंत में सबसे ज्यादा है।
0: साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी।
1: दो विशेषताएं और आपको दिखाई पड़ेंगी, एक तो ऐन्द्रिकता और दूसरे चित्रात्मकता उनकी कविता में, यानी ऐन्द्रिय संवेदना जो शब्द स्पर्श और घ्राण या श्रवण वगैरह की जो कल्पनाएं जो चित्र होते हैं वो उनमें जो ऐन्द्रिय संवेदना है उनकी कविता में काफी है।
2: कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर, लूट रही घाटी में लिपटी धूप छांव में निश्वर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर, मधुकर दल तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल।
3: इनका जन्म कुर्मांचल प्रदेश के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और पिता ने दीर्घ जीवन की मनौती मनाते हुए नवजात को एक गोस्वामी को अर्पित कर दिया और आप गोसाई दत्त कहलाए।
4: नियति का वही परीक्षा काल था, माता ने अपने पुत्र को देखा ही नहीं दृष्टि भर के, वो 6 घंटे के उपरांत ही अपने मूर्छा में ही समाप्त हो गई।
3: आप सुन रहे हैं समकालीन महान कवयित्री महादेवी वर्मा के विचार।
4: धीरे धीरे ये बड़े हुए, 4 बहनें इनकी, 3 भाई थे, सबसे छोटे यही थे। इनको बहुत दुलार मिला, परंतु मातृहीन बालक को जब हम दुलार भी देते हैं तो उसमें एक दया तो होती है, एक करुणा तो होती है। बेचारा मातृहीन है। इससे पंत जी के स्वभाव में 2 परिवर्तन आए। एक तो उन्होंने प्रकृति को ही अपनी धात्री अपनी माता माना, दूसरे हर नारी के प्रति उनके मन में एक

0: कोमल भावना जागी।
1: माँ मेरे जीवन की हार, तेरा मंजुल हृदय हार हो, अश्रु कणों का ये उपहार, मेरे सफल श्रमों का सार, तेरे मस्तक का हो उज्जवल श्रम जलमय मुक्तालंकार, मेरे भूरी दुखों का भार तेरी और इच्छा का फल हो, तेरी आशा का श्रृंगार, मेरे रति कृति व्रत आचार, माँ तेरी निर्भयता हो नित, तेरे पूजन के उपचार, यही विनय है बारंबार, यही विनय है बारंबार।
2: आरंभिक वर्षों में कवि ने प्रकृति के आंचल में रहकर ही काव्य रचना की और उद्घोषित किया,
3: छोड़ द्रुमो की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन।
4: ये हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक और कवि डॉक्टर श्याम सिंह शशि।
3: और हिमालय पुत्र क्या लिखेगा, वहाँ तो प्रकृति की गोद में वो विचरण किया है उसने, प्रकृति को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसे जिया था।
2: और फिर तो प्रार्थना के मृदुल स्वर भी रंगते चले गए प्रकृति प्रदाता उस अनंत को रिझाने में।
1: नमन तुम्हें करता मन, हे जग के जीवन ध्यान मौन प्रत्युर स्पंदन में, स्मरण तुम्हें करता मन, तुम अंतर के पथ से आओ, चिर श्रद्धा के रथ से आओ, जीवन अरुणोदय संग लाओ, नव प्रभात युग नूतन, आज व्यक्ति के उतरो भीतर, निखिल विश्व में विचरो बाहर, कर्म वचन मन जन के उठकर बने युक्त आराधन, नमन तुम्हें करता मन।
5: पंत जी का जो प्रकृति चित्रण है, चाहे वो कौसानी और पहाड़ का जहाँ के वो मूलतः थे उससे बहुत प्रभावित है, तो इसलिए वो एक जो अनुभव संभार था और प्रकृति का जो सीधा संपर्क था उसका बहुत ही सृजनात्मक उपयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है।
4: आप सुन रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि, लेखक और चिंतक अशोक वाजपेयी के विचार।
5: सोन जूही की बेल नवेली, एक वनस्पति वर्ष हर्ष से खेली। तो अब इसमें वर्ष हर्ष का जो खेल है, पंत जी को शब्दों और अक्षरों पर बड़ी पकड़ थी।
6: मैं जीवन में सोचता रहा, खोजता रहा, कभी ऊर्ध्वमुख फिर अंतर्मुख, कभी बहिर्जग में भी बहा, अब लगता मैं अपने ही को खोजता रहा, व्यग्र निरंतर मेरा ही बहुमुख प्रसार था, बाहर भीतर ऊपर।
7: जो पहला चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पंत जी का मौलिक चरण है जिसमें प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य मुख्य रूप से आता है।
2: आप हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी।
7: पंत जी ने स्वयं लिखा है कि मुझे काव्य की प्रेरणा प्रकृति से मिली। उन्होंने बादल, चांदनी, तारा, जंगल, परिवेश, जो वर्णन उन्होंने किया है वहाँ का आप देखिए, लो चित्र सलभ सी पंख खोल, उड़ने को है चित्रित घाटी, यह है अल्मोड़े का बसंत, खिल पड़ी निखिल पर्वत पाटी। प्रकृति को कई बार वो रहस्य के उसमें भी ले जाते हैं, जैसे मौन निमंत्रण कविता उनकी है, एक तारा उनकी कविता है, और प्रकृति का नारी रूप में भी चित्रण करते हैं।
1: खेच ऐचीला भ्रूसुर चाप, शैल की सुधियों बारंबार, हिला हरियाली का सुदकूल, झुला झरनों का झलमलहार, जलत पट से दिखला मुखचंद्र, पलक पल पल चपला के मार, भग्न उर पर भूधर सा हाय, सुमुखी रख देती हो साकार।
4: निश्चय ही कवि ने पहाड़ों, गांवों और मन के उद्वेगों तथा गहन आंतरिक आकुलता को वाणी देकर जिस सघनता के साथ काव्य में उतारा है वो हर दृष्टि से प्रशंसनीय और श्लाघ्य है। आप हैं साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव, लेखक और चिंतक प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी।
5: उस एकांत में भी वो हर तरह की आवाज सुन लेता था। यहाँ तक कि ठीक सांझ के वक्त जब कलियां चटक के फूल बन जाती है उसमें एक आवाज होती है, उस आवाज को भी वो सुन लेता था। इसीलिए अज्ञे ने कहा था कि ये स्वर सिद्ध कवि है। मगर उस एकांत में वो ढूंढता किसको था, सवाल ये भी तो उठता है। और जो दूसरी चीज उसके काव्य साहित्य में हमें दिखाई पड़ता है वो अज्ञात के प्रति आकर्षण। माँ की भी बड़ी भूमिका है, इच्छा भी होती थी कि आकाश के पते पर वो एक चिट्ठी लिखे।
4: नन्हे बालक गोसाई दत्त के अंतर्मन में अपनी माँ को खोने की पीड़ा शायद इतना घर कर गई थी कि वो चर अचर में केवल अपनी माँ को ही खोजता, प्रकृति के विराट रूप में केवल अपनी माँ को ढूंढता। वो अज्ञात, क्या वो माँ थी?
0: संतान को जन्म देने में प्राण दे देती है तो जन्म तो सभी का किसी माता की पीड़ा है। और इसने उनके मन को इतना आंदोलित किया था कि उनकी कितनी कविताएं आप देखेंगे, मुक्त करो नारी को मानव मुक्त करो।
2: महादेवी वर्मा ने शायद अपने भ्राता के काव्य में छिपे प्रकृति प्रेम के कारण को पहचान लिया था।
0: और इसी तरह अपने रूप को उन्होंने बनाया, घने लहरे रेशम से बाल, धरा है मैंने सिर पर देवी तुम्हारा ये स्वर्गिक श्रृंगार। और मैं समझती हूँ कि उनकी माता नहीं रही तो पूरी पृथ्वी ने मानो उनको माता बन के अपने अंक में ले लिया।
4: स्त्रियों के प्रति पंत का संभाव, स्त्री स्वातंत्र और सामंत युगीन दास्ता से मुक्ति भी आपके साहित्य में मुखरित हुई है।
1: सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, पूत योनि वह मूल्य धर्म पर केवल उसका अंकित। वो समाज की नई इकाई, शून्य समान अनिश्चित, उसका जीवन मान मान पर नर के है अवलंबित। योनि नहीं है रे नारी, वो भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वो रहे न नर पर अवसित।
2: पंत की रचनाओं में अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता उनके भाव पक्ष को गहराई तथा विविधता प्रदान करती है। पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी दिखता है। कुछ छंद ग्राम्या में संकलित उनकी कविता संध्या के बाद से।
8: दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता नीराजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं, जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पाति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर, लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत श्लथ डगधर, छिपे गृहों में म्लान चराचर छाया भी हो गई अगोचर, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊंघ रही लंबी अंधियारी।
4: कविवर पंत का काव्य प्रवाह प्रकृतिवाद और रहस्यवाद से धीरे धीरे प्रगतिवाद फिर राष्ट्रवाद की ओर गतिमान होता है। समकालीन कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन।
9: युगांत के द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, गा कोकिल बरसा पावक कण, बढ़ो अभय विश्वास चरण धर में क्या समग्र राष्ट्र के लिए ही क्रांतिकारी आह्वान नहीं है? युगवाणी और ग्राम्या में पंत जी अधिक खुलकर राष्ट्र के गायक के रूप में आगे आते हैं। चरखे पर भी उन्होंने कविता लिखी। उनका दृढ़ विश्वास है कि भारत का भविष्य तब तक उज्जवल नहीं होगा जब तक वह मध्ययुगीन मनोवृत्तियों से निकलकर आधुनिकता को ना अपनाए। उनका राष्ट्रगान जन भारत हे बहुत बार रेडियो पर सुना जाता है।

0: पंत हिंदी साहित्य के नए युग के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कई काव्य संग्रह भी लिखे, इनमें वीणा, पल्लव और गुंजन छायावादी शैली में सौंदर्य और प्रेम की प्रस्तुति हैं। अपनी लंबी कला यात्रा के दौरान आपको चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और साथ ही आपको सोवियत लैंड पुरस्कार, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इस सरल हृदय महाकवि को गर्व तनिक भी छूना गया था। अपना संस्मरण साझा कर रहे हैं अशोक वाजपेयी।
1: परिमल का इलाहाबाद में रजत पर्व था और उसमें मैं भाग लेने गया था। पंत जी बैठे थे उसमें, सामने बैठे थे। मैं बहुत ही 27-28 वर्ष का युवक था, थोड़ी बहुत कविता लिखने के कारण जाना जाने लगा था, तो मुझे एक गायक बुला लिया गया। तो मैंने ये कहा कि अगर रचना की सार्थकता का निकष उसकी दृष्टि हो तो ये अपर्याप्त भी है, क्योंकि रचना की असली सार्थकता तो उसके ब्योरों से तय होती है। और दुर्भाग्य से मैंने पंत जी का उस समय काव्य निकला था, महाकाव्य लोकायतन, उसका उदाहरण दिया और कहा कि उसमें जो प्रकट दृष्टि है वो सकल मानव के कल्याण की कामना करती है, लेकिन फिर भी ये महाकाव्य अप्रासंगिक क्यों लगता है। अब मैं हिम्मत करके ये बड़बोलापन कर तो गया, तो पंत जी ने कहा तुमने बात तो दुष्टता पूर्वक की है लेकिन अच्छी की है। तो अब आप सोचें कि एक बड़ा कवि बजाय नाखुश होने के या नाराज होने के उन्होंने मुझे ये कहा।
2: कवि पंत न सिर्फ प्रकृति के कुशल पर्यवेक्षक थे बल्कि उन्हें अध्ययन से भी बेहद लगाव था। महाकवि के साथ अपने अनुभव पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर श्याम सिंह शशि।
3: पुरानी बात है, शायद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रिया का कोई अधिवेशन था, किसी एक सत्र में मेरा भाषण रख दिया गया था। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार श्री उपेंद्र नाथ अश्क से भी वहीं भेंट हुई थी। मैंने कहा, अश्क जी आप तो प्रयागवासी हैं, पंत जी से बहुत अच्छा परिचय होगा, मुझे भी मिलवा दीजिए ना उनसे। और अगले दिन हम पंत जी के निवास पर विराजमान थे। पंत जी ने बड़े प्यार से हमें बिठाया। मैं कुछ और पूछूं कि स्वयं पंत जी ने ही प्रश्न किया, आप तो मानव शास्त्री भी हैं और क्या क्या लिखते हैं। मैंने कहा, जी हिमाचल के यायावरों पर डॉक्टरेट की थी, मार्गरेट मीड का नाम पढ़ा है, उनकी तरह

विश्व यात्राएं की हैं? पंत जी ने ही प्रश्न किया। जी नहीं, मैंने कहा। तो फिर यायावरी अध्ययन अधूरा है, ये उनके शब्द थे। लेकिन मैंने राहुल सांकृत्यायन को तो पढ़ा, ये मैंने कहा।

0: स्थिति का चितेरा भर समझता था।
1: पंत का काव्य जीवन निरंतर गतिमान रहा। एक बिंदु पर वो कभी अधिक काल तक नहीं टिके। पल्लव ने तत्कालीन हिंदी काव्य साहित्य में युगांतर उपस्थित कर दिया था। पल्लव के बाद उनकी वीणा और ग्रंथी रचनाओं ने काव्य जगत में उनकी स्थिति को और महत्वपूर्ण बना दिया। प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी,
2: पल्लव की जो उन्होंने भूमिका लिखी थी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी डॉक्यूमेंट है जो उस समय के काव्य जगत को शैली, भाषा, पद, इन सब को लेकर एक बहुत गहरा विवेचन है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा को लेकर एक इतना गहरा जो है एक आलोचना का स्वरूप उभर के आया है जो उस समय का एक चार्टर बन गया था।
3: ये निर्विवाद सत्य है कि जहां एक ओर पंत की ख्याति निरंतर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके विरोधियों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही थी। काव्य क्षेत्र में ब्रज भाषा का आंचल छोड़कर खड़ी बोली में कविता करने वाले और नाना प्रकार के विचारों के मृदुल फूल खिलाने वाले इस कवि का कुछ आलोचक मजाक उड़ाते, कुछ कटु व्यंग्य कसते और कुछ कुठाराघाती मनोवृत्ति का परिचय देते हुए उन्हें काव्य क्षेत्र से बाहर करने की चेष्टा भी करते। पर पंत ये विचार करके कि ये विरोध केवल विरोध के लिए ही किया जा रहा है, शांत बने रहे, हिमालय की तरह अडिग।
4: जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जावें दुख सुख से और सुख दुख से, मेरे मन के मधुवन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नव नव सांसों का सौरभ नव मुख का सुख बरसाओ।
1: आर्थिक संकट से गुजरते हुए उन पर इन सब बातों की अजीब सी प्रतिक्रिया हुई और वो बीमार पड़ गए। यक्षमा ने उन्हें घेर लिया, पर उनकी अदम्य प्राण शक्ति और सघन चिकित्सा ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद पंत काला कांकर चले आए। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण उन्हें बहुत रुचिकर लगा। उन्होंने पलाश वन के बीच एक टीले पर बने हुए छोटे से बंगले को अपने रहने के लिए चुना और उसका नाम रखा नक्षत्र।
4: भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला दृग श्यामल, शस्य भरा जन जीवन आंचल, गंगा यमुना में शुचि श्रम जल, शील मूर्ति सुख दुख उदासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी, स्वप्न मौन प्रभु पद नत चितवन, ओठों पर हंसते दुख के क्षण, संयम तप का धरती सामन, स्वर्ग कला भूपत प्रवासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी।
3: यूं तो लोक व्यवस्था और समाजवाद के लिए गांधीवाद को अपनाते हुए भी कवि ने अपने सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत की कभी उपेक्षा न की। तभी तो नंग धड़ंग दो बच्चे उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं।
4: जल्दी से टीले के नीचे उधर उतर कर है चुन ले जाते कूड़े से निधियां सुंदर, सिगरेट के खाली डिब्बे पन्नी चमकीली, फीतों के टुकड़े तस्वीरें नीली पीली।
3: पंत स्वभाव से आशावादी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्यांतर और भारत के पूर्ण स्वाधीनता से पहले सन 1941 में कवि लिखता है,
5: मानव समाज का भविष्य मुझे जितना उज्जवल और प्रकाशमान जान पड़ता है, उसे वर्तमान के अंधकार के भीतर से प्रकट करना उतना ही कठिन लगता है। भविष्य के साहित्य को इस युग के वाद विवादों, अर्थशास्त्र और राजनीति के मतांतरों द्वारा इस संदिग्ध काल के घृणा द्वेष कलह के वातावरण के भीतर से अपनी वाणी नहीं देनी पड़ेगी। उसके सामने आज के तर्क, संघर्ष, ज्ञान विज्ञान, स्वप्न, कल्पना सब घुल मिलकर एक सजीव सामाजिकता और सांस्कृतिक

0: चेतना के रूप में वास्तविक एवं साकार हो जाएंगे।
1: स्वाधीनता के उपरांत पंत ने आकाशवाणी से जुड़कर हिंदी प्रसारण को नई दिशा प्रदान की। उन्हें आकाशवाणी में लाने का श्रेय तत्कालीन उप महानिदेशक बालकृष्ण राव तथा डॉक्टर नगेंद्र जी को जाता है। भारतीय प्रसारण का इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार पंत के ज्योतिर्स्पर्श से रेडियो का वायुमंडल और अधिक ज्योतित हो उठा।
2: रविन्द्रनाथ की अपूर्व कल्पना वैभव तथा सौंदर्य बोध से प्रेरणा ग्रहण कर मेरे सृजन में संभवतः नए आयाम उदय हुए।
1: आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पर आकाशवाणी में ध्वन्यांकित पंत की वार्ता के अंश।
2: बात को रविन्द्रनाथ जब स्वास्थ्य लाभ करने के उद्देश्य से सन 1934 की गर्मियों में 2 महीनों के लिए अल्मोड़ा आए, तब मुझे उनसे अनेक बार मिलने तथा उनका व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करने का भी अविस्मरणीय सुअवसर प्राप्त हो सका।
3: रेडियो में 7 वर्ष तक कार्य करते हुए पंत का कवि रूप निरंतर सजग और कार्यशील रहा। इस काल में उन्होंने रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण और अतिमा नाम से काव्य रूपकों का निर्माण किया। 1958 में उन्होंने कला और बूढ़ा चांद की सृष्टि की, जो कालजयी रचना थी। इस तरह छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत ने जगत की विस्तृत समूची भाव भूमि पर स्वच्छंदता के साथ विचरण किया।
4: उस निर्जन टीले पर दोनों चिलबिल एक दूसरे से मिल, मित्रों से हैं खड़े मौन मनोहर, दोनों पादप सह वर्षा तप हुए साथ ही बड़े दीर्घ सुदृढ़।
3: 28 दिसंबर 1977 को देश की बौद्धिक राजधानी प्रयाग में प्रकृति का ये पुत्र हमेशा हमेशा के लिए प्रकृति की गोद में समा गया। पंत के आधी सदी से भी अधिक रचना काल में आधुनिक हिंदी कविता का पूरा एक युग समाया हुआ है, जो हमारी महान विरासत है। महादेवी वर्मा
5: वे हमारे काव्य के वासंती वैभव हैं। वे सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनका सौंदर्य सीमित नहीं था। हरी धूप से लेकर अंतर मन तक वो व्याप्त था। पंत जी का दर्शन मानवता को उदात्त मानता था, और इसी तरह वो कहते हैं, जग के उर्वर आंगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन,
6: बरसो सुख बन सुषमा बन, बरसो जग जीवन के घन।

अभी आप सुन रहे थे रूपक बरसो ज्योतिर्मय जीवन। रूपक की प्रस्तुति थी डॉक्टर संजय सिंह की। आप सुन रहे थे इस रूपक का पुनः प्रसारण। श्रोताओं, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। दिनांक 29 मई 2026 को सुबह 11 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सागर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सैनिक व उनके परिजन इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे हैं आप गाना डियर जिंदगी फिल्म से, कौसर मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

उर्दू गजल को आसान और आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। उनकी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गजलों का इस्तेमाल जुनून, मसान, जीरो और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में किया गया है। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गजल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को पड़ जाएगा।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी फिल्म से ये गाना, रश्मि विराग के बोल, जीत गांगुली का संगीत। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार में उनकी चर्चा जिनके बुलंद आवाज और रोबदार अभिनय की दुनिया कायल है।
1: मालूम होता है बदमाशी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती।
2: अपनी दी हुई इस निशानी को पहचानिए जिल्लेदाई, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ।
1: लो देखो
2: अनारकली।
1: देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी और ये राज के अनारकली जिंदा है, तुम्हें राज रखना होगा ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी।
2: ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहीशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी।
1: अनारकली बहुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम है। एक गुलाम की बेबसी पर और करो की तो शायद तुम हमें माफ कर सको।
0: जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो है आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर।

0: राज कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया।
1: जग

0: सन 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा।
1: सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दे।
2: मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा।
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
2: कनीज तो कब की मर चुकी है।

पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए।

1968 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: मुगले आजम में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या जब लैला ही इस बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया।
2: शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू ये गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है।
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
2: शेखू शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगी।
2: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर के फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

0: कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक

जो पहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख है नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

ग्वालियर जिले के लिए ये महीना मिला जुला रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ग्वालियर में राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन का शुभारंभ करने भी पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सभी को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़कर प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्वालियर में पशुओं के केयर एंड वेलनेस सेंटर खोलने, पशु स्वास्थ्य एवं उपचार केंद्र का उन्नयन करने और डबरा में नया पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के साथ अन्य अतिथिगणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ऋषि गालो विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार भूमि पूजन किया। गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण मध्य भारत शिक्षा समिति के द्वारा ग्वालियर जिले के बेला गांव के अंतर्गत लगभग 55 बीघा जमीन पर 110 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा से यहां शैक्षणिक सत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण विश्वविद्यालय 3 वर्ष में बनकर तैयार होगा। ग्वालियर जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय के द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने शहर में चल रहे जनगणना कार्य का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू दर्पण कॉलोनी में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तुस्थिति को जाना। गौरतलब है कि बीते 1 मई से शुरू हुई जनगणना का प्रथम चरण 30 मई तक चलेगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हाल ही में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया। इस श्रमदान कार्यक्रम के तहत लक्ष्मीगंज स्थित ऐतिहासिक मेहराब साहब की तलैया पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अगुवाई एवं कलेक्टर रुचिका चौहान की प्रेरणादायक मौजूदगी में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजनों ने एक साथ तलैया की सफाई में अपना योगदान दिया। ग्वालियर जिले में भी भूमि नामांतरण प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। इसके साथ ही इस व्यवस्था से नागरिक सुविधाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाया गया है। साइबर तहसील 2.0 वर्तमान में जिले की सभी तहसीलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। वहीं जिले के विकास खंड घाटी गांव की ग्राम पंचायत आरोन में जलगंगा संवर्धन अभियान एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 के तहत यहां बने कोलीझोरा तालाब ने यहां के 50 हेक्टेयर बंजर नुमा सूखे क्षेत्र के रकबे को उपजाऊ खेतों में बदल दिया है। अब इन खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें लहलहाने लगी हैं। ग्वालियर जिले में समर्थन मूल्य पर सुव्यवस्थित ढंग से गेहूं का उपार्जन जारी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 40 केंद्र संचालित हैं। 22 मई तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में 7,448 किसानों से 9,97,494 क्विंटल गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। बीते दिनों प्रदेश के जल संसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पेयजल प्रबंधन के साथ साथ जनहित के अनेक मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह अहलूवालिया ने संत योगी हुजूर मालिक साहब के जीवन पर आधारित पुस्तक दिव्य चरितामृत का विमोचन किया। आध्यात्म निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के भी उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता संत कृपाल सिंह ने की। कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर हुए शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की नौकरी दिलाई जा रही है। जिले में वर्तमान में शक्ति दीदी के तहत पहले से ही 112 महिलाएं ये भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही हैं। पिछले दिनों ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने जायजा लिया। गौरतलब है कि गाय के गोबर से सीएनजी बायोगैस उत्पादन के क्षेत्र में यह प्रदेश के सबसे बड़े प्लांट में से एक है। आदर्श गौशाला लाल टिपारा ने गौवंश के प्रबंधन के साथ साथ गाय के गोबर व कचरे से वायु गैस उत्पादन कर देश प्रदेश के लिए अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्वालियर जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक फैसलों तथा सरकारी और जनहित से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी सीधे आपके मोबाइल फोन पर मिलेगी। कलेक्टर ने हाल ही में इससे संबंधित एक व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया है। ग्वालियर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख था नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारे देश के अजीमुशान शायर बशीर बद्र साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी जो शायरी है, सरल, दिल को छू लेने वाली, वो आज भी भारतीय जनमानस के बहुत गहरे में बैठी हुई है। उनकी शायरी ने बहुत आसानी से उर्दू को दिलों तक पहुँचाया है और ख़ासकर इंसानी जज्बात को बहुत गहरे दिलों में उतारा है। तो कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवा रहे हैं बशीर बद्र साहब का कलाम। आइए सबसे पहले सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: कार्यक्रम संगीत सरिता में, माफ कीजिए, कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं तलत अजीज की आवाज़ में बशीर बद्र साहब का कलाम।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए आप सुनते हैं बशीर बद्र साहब का कलाम तलत अजीज की आवाज में।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: श्रोताओ, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। दिनांक 29 मई 2026 को सुबह 11 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सागर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सैनिक व उनके परिजन इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम संगीत सरिता के आखिर में आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में बशीर बद्र साहब के अल्फाज।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: 3 महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
1: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
1: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
2: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
1: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
1: और फास्ट बॉलिंग से भी।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम आपकी पसंद में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। पटवारी परिवार ईश्वरवारा से सुनना चाहते हैं। सतीश पटवारी, सविता, प्रशांत, शिवांशी, कान्हा, रौनक, मुन्ना भाई, पूजा, पिंटू, प्रियांशी, रितेश, किट्टो, लक्ष्मीपुरा चोपड़ा के सामने, लक्ष्मीपुरा वार्ड से फरमाइश है। NR शिवात्री, श्रीमती केशर शिवात्री, हेमंत, योगेश, कैलाश, निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश, आयुष और समस्त शिवात्री परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा। चंडीगढ़ से इस गीत की फरमाइश की है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अगर तुम ना होते फिल्म से ये गीत। शब्द रचना है गुलशन बावरा की, संगीत RD बर्मन का।

अगर तुम ना होते, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। और आइए अब सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, सदर बाजार सागर से मोहम्मद बशीर मकरानी, आसिफ मकरानी, साजिद मकरानी, इमरान मकरानी, अब्बास मकरानी, ईशान मकरानी, अनवर मकरानी, यहीं से इस गीत की फरमाइश की है। फराज मकरानी, समीर मकरानी, शबे नूर मकरानी, साबरीन मकरानी, रुबीना मकरानी, तबस्सुम मकरानी, रेहान मकरानी और इनके सभी परिवार के सदस्यों ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठोंदिया, सुजीत, रमाकांत दुबे, संत रविदास वार्ड, बड़ा करीला, नई बस्ती सागर से फरमाइश की है। डीडी पटेल, सुनीता पटेल, मानसी, देवांश, देविका, भूमि, साधना और नूतन पटेल ने ये सभी सुनना चाहते हैं तवाया फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों की, अल्फाज हसन कमाल के, संगीत रवि का।

0: का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: श्रोताओं, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। दिनांक 29 मई 2026 को सुबह 11 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सागर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सैनिक व उनके परिजन इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम आपकी पसंद में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमें भेजी है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कंवर। गोपालगढ़ राजस्थान से सुनना चाहते हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार। आर्यनगर कोहिका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों को। फिल्म का नाम है 10 नंबरी, शब्द रचना मजरूह की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
4: दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे,
4: सारा

0: 4720.
1: कार्यक्रम आपकी पसंद में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये गीत। इसे पसंद किया है करणवीर हाउस भुंचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन अभिजोत। इसी गीत की फरमाइश की है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोट निखिल कांगड़ा तन्वी बोट अंकित कांगड़ा। आप सभी सुनना चाहते हैं विपिन सचदेवा की आवाज़ में चांद का टुकड़ा फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो लिखा है सावन कुमार ने संगीत महेश किशोर का। आइए सुनते हैं।

जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582

चांद का टुकड़ा इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग के साथ ही फरमाइशी फिल्मी नकमों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार

0: जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
0: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया।
0: गांव ढाणे कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत।
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
0: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
0: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
0: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
0: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
0: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
0: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
0: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
0: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
0: जी,
1: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
0: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी, वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी,
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
1: जी,
0: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के

0: के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
1: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है।

0: यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को, मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय

0: रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
1: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
2: धन्यवाद श्रीमान।
1: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
2: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
1: वेरी एम्बिशियस, लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
2: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
1: बेस्ट ऑफ लक। और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
2: हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही

0: हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली, आयो महाकाली।
2: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
3: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
2: आक्रमण हुआ
3: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय महाकाली, आयो महाकाली।
3: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
4: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
3: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
2: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
3: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
2: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
3: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
5: ना छोड़नु, ना छोड़नु।

0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गई।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे।
6: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
5: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 11:30 होने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
6: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद

0: स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

किसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश

0: कुमार सानू अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले

0: उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है।

आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की, और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन एक बार इबारत ज़रूर फिर से पढ़ देते हैं, है ना, हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छाओ में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए, तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर्वत भी झुक जाते जब होती तुम पास कभी, तुम्हारे इशारों में ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं, और संगीत अगर ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है। प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं। ये जुल्फ, ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आँखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफ़र का इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफ़र का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम सफ़र में हैं। कभी कभी

मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है, तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें ज़िंदगी में हर रोज़, हर सुबह सबसे पहली चीज़। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीज़ों का और गिनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूंगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवर है और बहुत सारी शब्द जो इनको नज़र आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत ज़रूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाज़ार की बात की गई थी, है ना, मीना बाज़ार, जौहरी बाज़ार, इस तरह के बाज़ार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाज़ार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाज़ार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतज़ार है। आप मैसेजेस भेजिए, तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छाँव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाज़ारों की, तो दिल्ली का लाल किला मीना बाज़ार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला मीना बाज़ार, दिल्ली का पहाड़गंज पालिका बाज़ार घूमे हैं, और बड़े मॉल में भी मीना बाज़ार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल बाज़ारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाज़ारों के नाम अगर आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा, और वहाँ पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मज़ा कुछ और है, और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीज़ें खरीदने का भी मज़ा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत से, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ, और आपके इन दो जवाबों का इंतज़ार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है, और साथ ही साथ बाज़ारों के नाम और वहाँ पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घुमा हुआ है मैंने जौहरी बाज़ार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं, फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाज़ार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफ़ी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफ़ी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है और ऐतिहासिक छत्ता बाज़ार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाज़ार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमें तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफ़ी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहाँ से दुपट्टे खरीदे हैं और वहाँ पर लकड़ी के भी काफ़ी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफ़ी पहले घूमी हूँ तो काफ़ी कुछ लिया है वहाँ से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्छक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाज़ार जो कि रात भर खुला रहता है और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में भी हाट बाज़ार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे। फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए, जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुंचकर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाज़ारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाज़ार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिगी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और भिलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार हैं, सांगानेर बाज़ार, पवन बाज़ार, आज़ाद बाज़ार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ़ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर ज़िला गांव में लगते हैं, बिहार के बांका ज़िले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े, गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहाँ विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहाँ जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुँच रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो मुझे बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नज़दीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और ख़रीदारी का मज़ा तो बाज़ार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाज़ार लगता है जहाँ मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफ़ी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर ज़िले में बड़ा बाज़ार है जहाँ हस्तशिल्प, अच्छी डिज़ाइन की मोजड़ियाँ, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं। दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहाँ से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहाँ के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाज़ार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाज़ार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूँ तो। और यहाँ पर शादी के काफ़ी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफ़ी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है जहाँ पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी ज़िले में है, वहां पर भी काफ़ी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीज़ें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाज़ारों की बात की जाए तो भिंडी बाज़ार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया। हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं। और काफ़ी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाज़ार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाज़ार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज़ यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाज़ारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की गली, इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, और आप सब ने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाज़ार है। और साथ ही साथ बाज़ारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाज़ार माया बाज़ार है, लेकिन सिंगार के सामान, कपड़े और आभूषण हिंदी बाज़ार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाज़ार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या कम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए, और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: सुरीला सफर का वक्त अब खत्म होने को है, लेकिन आपके प्यारे प्यारे संदेश अब तक है मेरे पास। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे, लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाज़त चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है सुरीला सफ़र। आप बने रहें विविध भारती के संग।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है कलंक फिल्म से, आवाज श्रेया घोषाल और वैशाली भाड़े की। अमिताभ भट्टाचार्य के गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक पर है।
1: मध्यप्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इतने आश्वस्त करना चाहूंगा, किसान कल्याण के सारे काम सरकार लगातार करती रहेगी।
0: त्रिशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी, जिसे जज ने मंजूर कर लिया। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर के एक मकान में छापा मारकर अवैध कफ सिरप फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और 10 लोगों को हिरासत में लिया। मौके

से ऑफ कफ ब्रांड की करीब 1.5 करोड़ रुपए की नशीली सिरप, 700 से ज्यादा पेटियां और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गई। मकान मालिक फरार है और एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाकर अपलोड करना जरूरी होगा। रीवा में आज जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। कार्यशाला का मकसद ग्राम पंचायतों को नल जल योजनाओं का संचालन सौंपना और सरपंचों तथा सचिवों के साथ अनुबंध प्रक्रिया पूरी करना था। भारत के लिए पेट्रोलियम लेकर आ रहा तेल टैंकर निसोस कैरोस हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और उसके 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। ये जहाज 21 मई को शारजाह से रवाना हुआ था और आज सुबह उत्तरी अरब सागर में देखा गया। ईरान ने इस महीने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क वसूलने की घोषणा की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अवैध बताया है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अजब रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में 46.5 डिग्री तापमान के साथ भीषण गर्मी का कहर है तो दूसरी तरफ ग्वालियर और मुरैना में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर समेत 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से राहत मिलने के आसार है। वहीं 30 मई से 1 जून के बीच प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के आष्टा में आगामी जून माह में 2 से 8 जून तक राष्ट्रीय स्तर का संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बैतूल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन

0: स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
2: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि

0: कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप

0: बढ़ने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एस डी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक की कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे

0: मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
1: अच्छा,
0: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
1: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
0: ये मेरा तो गिराक के काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज होनी आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
1: आपने कहीं से सीखा था या?
0: जी सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
1: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
0: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
1: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
0: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
1: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
0: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
1: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
0: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
1: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
0: जी थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
1: आपकी
0: मैं मेरे
1: पसंद
0: का नाम लेना चाहूंगी मैम।
1: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
0: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
1: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे हैं।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रेरणा।

0: जी मुझे बताइए आप क्या
1: मुझे
0: करती
1: भी
0: हैं।
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर के ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
0: प्रेरणा जी आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है ओ यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी,
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ।
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की?
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर में रहते हैं मैडम, घर के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं?
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम, सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा, दो बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते
0: है। सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी।
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।

0: अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो वो सब फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े,
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ,
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 मिनट रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी, इधर लेट जाती हूँ।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहां से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरा ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है।
0: अच्छा,
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी,
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
1: हेलो सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी।
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ।
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है।
1: जी।
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है, इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता या आपको?
1: नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली ही रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने वैसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी, पापा मम्मी आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा
1: जी,
0: था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी, मैं स्थान पर गई हूँ और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी।
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी, पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है।

0: और इसे आप निभा रही हैं।
1: जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से, वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाज दीवाना,
0: रफी साहब का गाया हुआ।
1: जी जी जी।
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02224062 02228670288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं

0: 0202-28-67-02-88। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले। संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे।

विक्रम बड़ा भाई है, तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है, तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने, और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते। और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। राम नारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

0: पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।
1: बहुत

0: हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी।

विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आई। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 1.4 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 2,585 रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 40 रूपये बोनस का लाभ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 तक चलेंगी और सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहारा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको सिर्फ एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इसी सुविचार के साथ युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी मित्र शिल्पी अग्रवाल, तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं, वार्ता और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए गीत संगीत। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की पहली चर्चा से, जिसका विषय है ड्रग्स एवं नशे का सेवन ना करें। साथियों, आज के समय में नशा समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। चाहे वह शराब हो, तंबाकू हो, गुटखा हो या फिर ड्रग्स, हर प्रकार का नशा व्यक्ति के शरीर, मन, परिवार और भविष्य को नुकसान पहुँचाता है। शुरुआत अक्सर शौक या दोस्तों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत बन जाती है। नशे का सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ रहा है। जो युवा देश का भविष्य हैं, वे नशे की गिरफ्त में आकर अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर को बर्बाद कर रहे हैं। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कम करता है और कई बार अपराध तथा हिंसा की ओर भी ले जाता है। साथियों, नशा करने से फेफड़े, लीवर, दिल और दिमाग प्रभावित होते हैं। कई बार कैंसर, हार्ट अटैक या मानसिक बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ड्रग्स एवं नशे के सेवन से गुस्सा, तनाव, डर, अवसाद और याददाश्त कमजोर की समस्या बढ़ सकती है। इससे कैरियर व हमारे काम पर भी असर पड़ता है। साथियों, ड्रग्स एवं नशे के सेवन से झगड़े, आर्थिक परेशानी और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। एक नशे की लत व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी कमजोर बना देती है। कई परिवार टूट जाते हैं और युवाओं का उज्जवल भविष्य अंधकार में चला जाता है। साथियों, ड्रग्स एवं नशे का सेवन ना करें। इसके लिए अपना खाली समय उन गतिविधियों में बिताएं जो आपकी पसंद की हों, जैसे कि पेंटिंग,

खेल, संगीत या किताबें पढ़ना। नियमित रूप से व्यायाम और योगा करने से शरीर में प्राकृतिक रूप से एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे नशे की तलब कम होती है। साथियों, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस, परिवार के सहयोग और सकारात्मक सोच से करना चाहिए। माता पिता, शिक्षक और समाज की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों और युवाओं को सही मार्गदर्शन दें। साथियों, ये तो हमने छोटी सी चर्चा की ड्रग्स एवं नशे का सेवन न करें। और अब आपका मनोरंजन करवाते हैं इस मधुर गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आपने सुना मन फिल्म का ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीतकार थे समीर और संगीतबद्ध किया था संजीव दर्शन ने। साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में ले चलते हैं आपको एक और चर्चा की ओर। साथियों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के सच्चे मसीहा और भारतीय राजनीति में सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर चर्चा करेंगे। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हर साल 29 मई को मनाई जाती है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे उस किसान की आवाज थे जो खेतों में पसीना बहाता है और गांव में बसता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित किया। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर वर्ष 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गाँव में हुआ था। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होने के कारण उन्होंने किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा और समझा। यही कारण था कि आगे चलकर उनकी राजनीति का केंद्र गांव, किसान और कृषि बने। उन्होंने वर्ष 1923 में आगरा कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर 1925 में इतिहास में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। साथियों, चौधरी चरण सिंह का स्पष्ट विचार था कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने किसानों को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। साथियों, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कानून ने लाखों किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाई और उन्हें भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ। वे बड़े उद्योगों की अंधाधुंध नीतियों के बजाय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देते थे। वे अत्यंत सादगी पूर्ण जीवन जीते थे। सत्ता के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उनके व्यवहार में विनम्रता व ईमानदारी बनी रही। साथियों, वर्ष 1979 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, उनके सिद्धांत व विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सत्ता का नहीं। दूसरा, किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ है। तीसरा, सादगी, ईमानदारी और नैतिकता ही सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का निधन 29 मई सन 1987 को हो गया था। उनकी समाधि स्थल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है, भारत माता के ऐसे महान सपूत को हमारा सत सत नमन। साथियों, ये तो मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर, और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ले चलते हैं आपको एक वार्ता की ओर, जिसका विषय है गर्मी में जल संरक्षण। वार्ताकार हैं भूमिका चतुर्वेदी।
1: जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। प्रकृति पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे तथा सभी जल जीवधारी जल पर निर्भर करते हैं। जल केवल पीने के लिए ही नहीं आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन, सफाई, भोजन निर्माण तथा दैनिक जीवन के लगभग हर कार्य के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जल को जीवन कहा जाता है। गर्मियों का मौसम आते ही जल का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस मौसम में तापमान बढ़ने के लिए नदियाँ, तालाब और कुएं सूखने लगते हैं। भूजल स्तर नीचे चला जाता है तथा लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। गांवों में महिलाएं कई किलोमीटर दूर तक जाकर पानी लाती हैं। शहर में पानी की सप्लाई कम हो जाती है और लोगों को टैंकर पर निर्भर होना पड़ता है। कई स्थानों पर जल संकट गंभीर हो जाता है। पीने के पानी के लिए संघर्ष की स्थिति बन जाती है। आज बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए गर्मियों में जल संरक्षण केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जल का महत्व। जल मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। बिना भोजन के मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना होता है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है तथा शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। जल का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। घरेलू उपयोग, पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने, नहाने और सफाई के लिए आवश्यक है। खेती पूरी तरह जल पर निर्भर करती है। फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। कारखानों में मशीनों को ठंडा करने के लिए, वस्तुएं बनाने तथा सफाई के लिए जल का उपयोग होता है। विद्युत उत्पादन, विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण संतुलन, नदियाँ, झीलें तथा समुद्र प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के लिए भी जल आवश्यक है। गर्मियों में जल संकट के कारण, गर्मियों में पानी की कमी कई कारणों से उत्पन्न होती है। तापमान में वृद्धि, गर्मी के मौसम में सूर्य की तीव्रता, गर्मी के कारण जल तेजी से वाष्पित होता है। इससे तालाब, नदियाँ और झीलें सूखने लगती हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन, लोग जरूरत से ज्यादा पानी निकालने लगते हैं। बोरवेल और ट्यूबवेल में लगातार उपयोग से भूजल स्तर नीचे चला जाता है। वर्षा की कमी, यदि वर्षा कम होती है तो जल स्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं भर पाता। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई, पेड़ वर्षा लाने में सहायता करते हैं। पेड़ों की कटाई से वर्षा कम होती है और जल संकट बढ़ता है। जल प्रदूषण, नदियाँ और तालाबों में कचरा तथा रसायन डालने से पानी प्रदूषित हो जाता है। जल की बर्बादी, लोग नल खुला छोड़ देते हैं तथा आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करते हैं। जल संरक्षण का अर्थ, जल संरक्षण का अर्थ है जल का सोच समझकर उपयोग करना और उसे व्यर्थ होने से बचाना। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी बचाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना ना करना पड़े। जल संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। गर्मियों में जल संरक्षण की आवश्यकता, गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पीने के पानी की उपलब्धता, यदि पानी बचाया जाएगा तो सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिल सकता है। कृषि की सुरक्षा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और फसलें सुरक्षित रहेंगी। भूजल स्तर बनाए रखना, जल संरक्षण से भूजल स्तर नीचे नहीं जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने से नदियाँ, तालाब और झीलें सुरक्षित रहेंगी। भविष्य की सुरक्षा, आज जल बचाने से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। जल संरक्षण के उपाय, वर्षा का चयन, वर्षा के पानी को एकत्र करके उपयोग करना वर्षा जल चयन कहलाता है। यह जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। लाभ, भूजल स्तर बढ़ता है, पानी की कमी दूर होती है, भविष्य के लिए जल संग्रहित होता है। नलों को बंद रखना, कई लोग पानी का उपयोग करने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं। इससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है, इसलिए उपयोग के बाद नल तुरंत बंद करना चाहिए। रिसाव रोकना, टूटी हुई पाइपलाइन और टपकते नलों से बहुत पानी बर्बाद होता है, इन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए। बाल्टी से स्नान करना, शॉवर की तुलना में बाल्टी से नहाने पर कम पानी खर्च होता है। पेड़ लगाना, पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अधिक पेड़ लगाने से पर्यावरण संतुलित रहता है। जल पुन चक्रण, रसोई कपड़े धोने तथा अन्य कार्यों में उपयोग किए गए पानी को पौधों में डालने या सफाई के कार्य में पुनः उपयोग किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई, कृषि में ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने से कम पानी में अधिक सिंचाई संभव होती है। लोगों को जागरूक करना, जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों तथा सामाजिक संस्थाओं को अभियान चलाने चाहिए। विद्यार्थियों की भूमिका, विद्यार्थी समाज का भविष्य है, वे जल संरक्षण में महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभा सकते हैं। पानी व्यर्थ करना, दूसरों को जागरूक करना, स्कूलों में अभियान चलाना, पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना सरकार की भूमिका। सरकार को जल संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जैसे नए तालाब और बांध बनाना, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करना, जल प्रदूषण रोकना, जागरूकता अभियान चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुविधाएं बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट, गांवों में गर्मियों के दौरान जल संकट अधिक गंभीर होता है। कई गांवों में महिलाएं दूर दूर से पानी लाती हैं, पशुओं को भी पानी नहीं मिल पाता, खेती प्रभावित होती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या के समाधान के लिए तालाबों का निर्माण, कुओं की सफाई तथा वर्षा जल संचयन आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में जल संकट, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी इमारतें और उद्योग भूजल का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप कई शहरों में गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है। जल संरक्षण से पर्यावरण संतुलित रहता है। यदि पानी की कमी होगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ। बूंद बूंद से सागर भरता है। यदि जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा। जल है तो कल है, हर बूंद कीमती है। जल संरक्षण अपनाओ, भविष्य सुरक्षित बनाओ। पानी की बर्बादी रोको। गर्मियों में जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हम आज पानी की बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनानी चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जल है तो जीवन है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता गर्मी में जल संरक्षण। वार्ताकार थी भूमिका चतुर्वेदी। साथियों, हमारी आखिरी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस। हर वर्ष 29 मई को यह दिवस उन बहादुर शांति रक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है जो दुनिया के विभिन्न संघर्षरत क्षेत्रों में शांति और मानवता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। यह दिन उन वीर सैनिकों, पुलिस कर्मचारियों और नागरिक कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की शुरुआत 29 मई वर्ष 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति स्थापित करना है जहां युद्ध, हिंसा और अस्थिरता के कारण आम जनजीवन प्रभावित होता है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक विभिन्न देशों से आते हैं और बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करते हैं। नागरिकों की सुरक्षा करने, राहत कार्यों में सहायता देने तथा शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे देश के हजारों सैनिकों ने दुनिया के अनेक देशों में शांति स्थापना के कार्यों में भाग लिया है। भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी, अनुशासन और मानवीय सेवा के लिए विश्व भर में सम्मानित किए जाते हैं। कई भारतीय शांति रक्षकों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। श्रोताओं, शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है बल्कि यह मानवता, सहयोग और अपनी विश्वासी का प्रतीक है। आज के समय में जब दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है तब संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, वे हमें यह संदेश देते हैं कि संवाद, सहयोग और सहिष्णुता से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाते हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 2026 का मुख्य विषय है शांति में निवेश करें, इन्वेस्ट इन पीस। यह विषय शांति सैनिकों को उनके महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने हेतु निर्णायक कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देता है। साथियों, ये तो हमने आपको जानकारी दी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर, और अब आपके मनोरंजन के लिए सुनवाते हैं लव ब्रेकअप जिंदगी से ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना लव ब्रेकअप जिंदगी से ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी सलीम मर्चेंट की, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। और साथियों, अब वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है अप्रेंटिस, पदों की संख्या है 5000, आयु सीमा है न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 8 जून 2026। शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.bankin पर विजिट करें। साथियों, ये तो रही आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, तो अनुमति दीजिए अपने मित्र शिल्पी अग्रवाल को। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्स और लम्हे।
1: हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है लिजा के
2: लव्स और लम्हे।
1: मैं नासिर
2: और मैं साहिबा
1: सामाइन का खैर मकदम करते हैं।
2: सुनते हैं ये गजल लिजा जी की आवाज में।
3: आज जो गजल लेकर मैं आई हूँ उसका मौजू है प्यार हो गया। हर इंसान को जिंदगी में एक बार प्यार जरूर होता है, किसी न किसी से एक बार तो जरूर होता है।
4: बिन जुर्म कोई कैसे गिरफ्तार हो गया, बिन जुर्म कोई कैसे गिरफ्तार हो गया। पूछा सबब जो हमने कहा प्यार हो गया।
2: सुभान अल्लाह।
4: दुश्मन पे खुद से ज्यादा एतबार हो गया, दुश्मन पे खुद से ज्यादा

0: देखा जो आईना तेरा दीदार हो गया, देखा जो आईना तेरा दीदार हो गया, नजरें झुका ली खुद ने कहा प्यार हो गया।
1: वाह वाह,
0: इकरार से अंदाज सा इनकार हो गया, इकरार से

0: हो गया।
1: क्या खूब कहा है।
2: वाह बहुत खूब।
0: शुक्रिया शुक्रिया नवाजिश आपकी। आजकल इंसानों में रिश्तों के माने बदलते जा रहे हैं, अपना रुतबा खोते जा रहे हैं, अपना विकार खोते जा रहे हैं। ये गजल कुछ उसी चीज को दिखाने की कोशिश है। शहर

0: टुकड़ों में उनकी खातिर हालात हो रहे हैं।
1: वाह बहुत खूब।
0: रुतबे के आसमां पे थे बुर्ज का सितारा, रुतबे के आसमां पे थे बुर्ज का सितारा, नजरों से गिर के सारा जो खाक हो रहे हैं, नजरों से गिर के सारा जो खाक हो रहे हैं।
2: बहुत खूब बहुत खूब
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: और अब वक्त का तकाजा है कि हमें चलना होगा, इजाजत दीजिए साहिबा
1: और नासिर को
4: लिजा के
2: लफ्ज और लम्हे।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लफ्ज और लम्हे। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। श्रोताओं कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस कव्वाली से। आवाज़ है जानी बाबू कव्वाल और साथियों की।

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता, और कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बशीर बद्र की कुछ लिखी हुई गैर फिल्मी गज़लें। और आइए इसी क्रम में अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में एल्बम सजदा से ये गज़ल।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम संगीत सरिता के आखिर में आपको सुनवाते हैं इकबाल सिद्दीकी की आवाज़ में बशीर बद्र का ये कलाम।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए हमारा अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म शंघाई से।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तीसरी मंजिल से। आवाजें हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं RD बर्मन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

अभी आपने तीसरी मंजिल फिल्म का गीत सुना, आवाज़ें थी आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शक्ति फिल्म का गीत, लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत, और कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं बसंत देसाई का, वसंत देव का लिखा हुआ। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ है सुरेश वाडकर की और फिल्म है उत्सव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हो चुके हैं। श्रोताओं, समय है बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं राम गोपाल यादव व साथियों की गाई हुई ये गणेश वंदना।

राम गोपाल यादव व साथियों का गाया हुआ ये भजन अभी आपने सुना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये देवी गीत, स्वर है रज्जो राजा का।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं

राजा राम सिंह कोमल के गाए इस लोक भजन के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की

0: जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD News को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को इसे अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और अरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको जानकारी दे दें हमारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की और हमारी कल की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। सबसे पहले

0: आज के कार्यक्रम। श्रोताओं, अब से कुछ देर में शाम 7:10 से सुने जा सकते हैं प्रादेशिक समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 7:20 पर आप सुन सकते हैं कुछ बुंदेली लोकगीत, कार्यक्रम होगा लोक रंग। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 7:30 से होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं रात 8 बजे से। आज रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे सुनहरी यादें, आकाशवाणी के 90 वर्ष। आज इस कार्यक्रम में मेहमान होंगे महेंद्र कुमार त्रिवेदी, पूर्व निदेशक अभियांत्रिकी आकाशवाणी सागर। इनसे भेंट करेंगे जय शेखर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत पेश किया जाएगा रात 9 बजे से। और रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। और कल की प्रसारण सभा की जानकारी देने से पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: कल सुबह 6:05 पर सुना जा सकता है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ होगा सुबह 6:30 पर। कल इसका तीसरा भाग आप सुनेंगे। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम होगा सुबह 6:40 पर। दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह लेकर आएंगे सुबह 7 बजे से। 7:05 पर आप सुन सकते हैं कृषि संकेत। और मन चाहे गीत कार्यक्रम होगा सुबह 7:20 पर। कुछ गैर फिल्मी गीत आपको सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत। प्रसारण समय होगा सुबह 7:45 का। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होगा सुबह 8:15 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 से। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आप आनंद ले सकते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का। सुबह 10:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत। और ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी सुना जा सकता है सुबह 10:30 से। सुबह 11 बजे से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5:02 पर होगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी, अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 5:30 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। और 6:30 से होंगे कुछ सदाबहार फिल्मी गीत। लोकरंग कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। और कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के तहत प्रस्तुत की जाएगी शाम 7:05 से। शाम 7:20 पर कल आप सुन सकते हैं किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। कल का खास आकर्षण होगा आकाशवाणी गांव में। रात्रि 9 बजे से होगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और कार्यक्रम संगीत सरिता आप सुन सकते हैं रात 8:20 से। मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9 बजे से। और रात्रि 9:30 से आप विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी कल की प्रसारण सभा का समापन होगा। तो श्रोताओं, ये थे जानकारी आज की और कल की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज

0: किया था उसका असर अब दिखने। सोलर पैनल लग चुके हैं, आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पांच राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण, सीबीआई करेगी जांच और दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। केंद्र सरकार ने कहा, देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं, रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चालू। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने जम्मू पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल पूरे होने पर पांच राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग आज 182 देशों में मौजूद है और पूरी मानवता को जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा कि आज की दुनिया में ध्यान विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन गया है और जीवन में ज्ञान, ध्यान और संगीत हमेशा साथ रहने चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी योग्य छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं की वजह से बर्बाद हो। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। श्री प्रधान ने कहा,
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में कहा है कि इस चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें एनटीए को हटाकर उसकी जगह एक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाने भी शामिल कहा है और अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। केंद्र सरकार ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में अभी रोजाना 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक से गैस की कमी की कोई शिकायत नहीं आई है।
2: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने महज 4 दिनों में पाकिस्तान को युद्ध विराम की अपील करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस अभियान को भारत के सैन्य इतिहास की अभूतपूर्व सफलता बताते हुए कहा कि तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट तालमेल और आधुनिक सैन्य क्षमता का जीवंत उदाहरण था। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक प्रकाशन का भी विमोचन किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन

0: AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता वैष्णो देवी धाम में दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर और भूशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थ स्थलों से सीख ली जा रही है। पीशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर इलाके में एक मकान पर छापा मारकर अवैध कफ सिरप बनाने के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यहां ऑफ कफ नाम की नशीली सिरप बनाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पूरे सेटअप की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रात 12 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई सुबह 3 बजे तक चली, जिसमें 700 से ज्यादा पेटियां, बोतलें और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गई हैं। 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक पर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 40 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लग चुके हैं, जिनमें प्रदेश के 1,21,000 से अधिक घर शामिल हैं। प्रदेश में इन संयंत्रों से 456 मेगावाट से ज्यादा स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में शक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जबलपुर शहर के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एनएचपीआई करीब मीटर लंबी आउटर रिंग रोड बना रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कि वाहनों को शहर के बाहर से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छिंदवाड़ा के खोखरा वाटरफॉल पर कल बुधवार को हुए हादसे में डूबे दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए। हादसे में एक शव गुरुवार को और दूसरा शव 36 घंटे बाद आज फॉल के पास सेल्फी लेते वक्त संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में चले गए थे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से खूब पानी पीने, बच्चों को हाइड्रेट रखने और घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शासकीय महाविद्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अशोकनगर में गर्मी में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया। दतिया में जल संरक्षण और मनरेगा में लापरवाही पर 11 सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। धार में वन विभाग ने छापा मारकर निजी कंपनी के गोदाम से विभिन्न प्रजातियों की छाल और बीजों का अवैध भंडारण जब्त किया। झाबुआ में आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक छात्र 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। देवास में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कुओं, तालाबों और नदियों की सफाई और गहरीकरण का काम जारी है। नर्मदापुरम में पवारखेड़ा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगर मालवा के नलखेड़ा में विधायक भैरव सिंह परिहार ने 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। गुना में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। निवाड़ी में भाजपा जिला कार्यालय में मोदी जी के 12 साल बेमिसाल विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। शिवपुरी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटिशियन प्रशिक्षण में 31 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर सेमिनार और मॉकड्रिल आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं विनोद करोसिया की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये भजन।

0: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं।

0: तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम लोक रंग के आखिर में आपको सुनवाते हैं चंद्रशेखर शर्मा का गाया हुआ ये देवी गीत।

चंद्रशेखर शर्मा के गाए इस देवी गीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

भैया बहन रो, आज है 29 मई को दिन, और आज ही के दिन सन 1953 में हिमालय पर्वत श्रृंखला में संसार की जो सबसे ऊंची

पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। वापे सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरके ने सफलतापूर्वक चढ़ाई करी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर आए और जब पूरी चढ़ाई बड़ी दुर्गम है। मनोज, जिस साहसी लोगों ने अपने जीवन से असंभव काम को संभव बना दो और यही कारण से आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाओ जाते हैं। और आज के दिन की एक खास बात जस हुई है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़वे वाले जो पर्वतारोही थे तेंजिंग नोरगे, आज उनको जन्मदिन से ही हुए थे। 29 मई 1914 को उनको जन्म भाव थो। तो कहवे को मतलब जो हो कि आज को दिन पर्वतारोहण के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा और जो जब हम अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में जाए मनाते हैं तो जाको महत्व ही जो है कि हमारे जीवन में वन पर्वत नदियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये पर्यावरण के घटक हैं, अतः कुल मिला के हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत रहना चाहिए, जो संदेश आज को दिन अपनी दिए थे। अब अपन एक और बड़ा अच्छो गीत सुनाते हैं जे के लाने चिट्ठी मिली है हमें और ये अपने नए श्रोता हैं। नरसिंहपुर से भोले शंकर साहू, करकबेल से कमलेश कहार और गंज बासोदा जिला विदिशा से भागचंद साहू। जय एक और चिट्ठी है ग्राम मूरटक्का माफी ओंकारेश्वर जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल की और जय एक चिट्ठी है सरस्वती शारदा रेडियो श्रोता संघ चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल अनीता मोटवानी राजेश मुकेश सोमेश मनीषा और शुभम की। तो इन सबकी पसंद पे अपन सुनाते हैं लता मंगेशकर और साथियों को गाओ भाव फिल्म हिमालय की गोद में को जो गीत।

तो भैया बहन रहो, अपन और जो अच्छो अमदा सो गीत तो सुन ही लो। अब जाके संगे संगे कुछ जानकारी की बात हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय मिशन जब भारत सरकार के द्वारा शुरू करी गई एक बड़ी अच्छी योजना है, जाको उद्देश्य खेती की लागत को कम करवो और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लावो और रसायन मुक्त जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देवो। ये जाके मुख्य उद्देश्य हैं। और जाके उद्देश्यों में जासू ये कि लागत में कमी सुई आनी चाहिए। मतलब कहवे को जो किसानों को बाहरी जो महंगे उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इन पे जो निर्भरता है वह कम होना चाहिए। दूसरों है 15,000 क्लस्टरों के माध्यम से 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लावो और संगे संगे 1 करोड़ किसानों को एक संगे जोड़वो। जाके साथ साथ में जा में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र से स्थापित करवे को उद्देश्य। जाके बारे में अपन और कुछ और बात करें, मानो जहाँ हमारे यहाँ से चिट्ठी आ गई तो अपन और गाना सुन लिए थे। जहाँ चिट्ठी लिखी है दुर्गा चौक रायसेन से वीरेंद्र सेन, निर्मला सेन, रीता रीना, रितेश, राहुल, मोहित, छाया और निहारिका और ममता सेन ने। जय एक चिट्ठी है प्रेम रेडियो श्रोता संघ ग्राम बनगांव तहसील पतेरा जिला दमोह से प्रहलाद यादव, राकेश यादव, मनोज, सुषमा, संगीता, गीता, कविता और गोविंद यादव की। और जय एक चिट्ठी हमारे नियमित श्रोता हैं सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से, योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई, दुर्गाबाई और अमिता भारती ने। तो इन सब की पसंद पे अपनों ने सुना था फिल्म भाभी को जो गीत, देखो गाव है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

भैया बेनहरो, अपन राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में बात कर रहे थे, तो बाग के बारे में तो अपन ने जानकारी दे दी। अब एक बहुत जरूरी सवाल जो आप सबके मन में उठ रहा हुआ कि जा मिशन में भाग लेवे से किसानों को कौन कौन से लाभ और का का प्रोत्साहन मिला थे। तो जहाँ में सबसे पहले तो वित्तीय सहायता मिला थे किसानों को, आन फार्म इनपुट उत्पादन बुनियादी ढांचा के निर्माण के लाने 3 साल तक 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाती। दूसरा वो फायदा जो है कि जहाँ में प्रोत्साहन राशि दी जाते छोटे और सीमांत किसानों को प्राकृतिक खेती अपनावे के लाने 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष अधिकतम 1 एकड़ तक को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मिला थे। और तीसरी सुविधा जहाँ मिला था कि जाकर प्रशिक्षण दौर थे, जहाँ में प्रशिक्षण देवे के लाने का कहा जाता कृषि सखियों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण और निरंतर मार्गदर्शन दौर थे। अब आप और सोच रहे हो कि जब मिशन की और विशेषताएं क्या हैं, जाकर विशेषता जा है कि स्वदेशी और स्थानीय संसाधन जैसे देसी गाय आधारित और स्थानीय संसाधनों जैसे जीवामृत बीजामृत को उपयोग करवो, पोर्टल और प्रमाणीकरण, पारदर्शी निगरानी के लाने एक आनदर्शी ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और PGS इंडिया प्रणाली द्वारा प्राकृतिक उत्पादनों के प्रमाणीकरण व ब्रांडिंग की सहायता से करी जा रही है। तो भैया अच्छी योजना है जाको अपन लोगों को लाभ लेना चाहिए, है नहीं। अब जय चिट्ठी आ गई हमारे हाथ में, जाहे लिखी अपने नियमित श्रोता है बनियापारा छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और समस्त माखीजा परिवार ने। तो इन सब की पसंद पे अपन सुनाते हैं फिल्म बैजू बावरा में लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी को गाओ जो गीत।

भैया वेनर, देखो अपन ने जा बात करी, अब जाके बाद में एक दूसरी जरूरी जो जानकारी है वह है खेती में मल्चिंग की बात। खेती में मल्चिंग एक बहुत प्रभावशाली तकनीक है जिसमें फसलों के बीच में मिट्टी की सतह को जैविक जो चीज़ें होती हैं जैसे पत्तियाँ, भूसा, पुआल या दूसरी अजैविक चीज़ें जैसे प्लास्टिक शीट, इनसे ढांक दो जाते हैं। ऐसा कहा होता है कि मिट्टी की जो नमी है वह बचत है और खरपतवार आगे बढ़ नहीं पाए, खरपतवार विकसित नहीं हो पाए और तापमान नियंत्रित करके पैदावार बढ़ाते हैं। मल्चिंग को खेती में मुख्य महत्व और जैसे मिलने वाले फायदा बहुत सारे हैं, जैसे नमी को संरक्षण, मल्चिंग शीट से पानी के वाष्पीकरण को रोका थे, ऐसे खेत में लंबे समय तक नमी बनी रहते और सिंचाई की आवश्यकता कम होते, जैसे पानी और बिजली की दोनों की बचत होते। फिर दूसरा फायदा जैसे जो होते खरपतवार पर नियंत्रण होते, मिट्टी ढकी हुए कारण सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाए, जैसे अनावश्यक घास और खरपतवार नहीं उगे, निराई गुड़ाई को खर्चा और मेहनत दो ही बचत है। फिर तापमान को संतुलन से होते, गर्मियों में जब मिट्टी को ठंडो रखा थे और सर्दियों में पाले के असर को कम करके मिट्टी को तापमान अनुकूल बनाए रखा थे, जैसे जड़ों को विकास तेजी से हो सका थे। और एक बहुत अच्छा फायदा, बहुत बड़ा फायदा जो है कि बारिश या तेज हवा में खेत के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बेहद या उड़त नहीं है, जैविक मल्च जो सड़वे के बाद में खाद में बदल के मिट्टी की उर्वरा शक्ति यही है और बढ़ा दिए थे। और एक साथ साथ में गुणवत्तापूर्ण फसल मिला थे, फल और सब्जियां जैसे टमाटर, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा सीधे मिट्टी के संपर्क में आवे से सड़वे या दाग लगवे से बच जाते हैं, तो ऐसे उपज की गुणवत्ता अच्छी रहती है और बाजार में भाव से अच्छे मिला थे। तो जा एक अच्छा तरीका है और जाको अपन को उपयोग करना चाहिए। भैया मैंने अब देखो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से झग्गर राम साहू, मुरली मनोहर, जामुन देवी, नंदिनी, राजू, लल्ला, प्रांजल, समीक्षा और ग्राम सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी और मोहित गजेंद्र चंदन की चिट्ठी आई है जिन्होंने उन्हें अपनी पसंद के गीत सुनावे कराने कही है। जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ ग्राम कोहरवास तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर से विरोद कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, मनकोबाई, निशा, प्रियंका, बंटी, कपिल, प्रजभान, करण और छोटू कुशवाहा की चिट्ठी है। तो जिस सबने सुनो चाहो है फिल्म पड़ोसन में लता मंगेशकर और आशा भोंसले को गावो जो गीत।

भैया बहनहरों, शहरी क्षेत्रों के आसपास की सब्जियों के समूह के लाने वेजिटेबल क्लस्टर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना शहरी केंद्रों से 500 से 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में शहरी और अर्ध शहरी सब्जियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लाने बनाई गई है। जब PUVC योजना कहलाता है, जहाँ योजना को उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू जैसे जो फसलें हैं, जैसी जो सब्जियां हैं, इनके साथ साथ में फलों और सब्जियों की कीमतों में हुए बार जो बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव हुए थे, वह कम करवो है और जहाँ चरणबद्ध तरीका से लागू करवे को है। पहले चरण में 15 लाख या वहाँ से ज़्यादा की आबादी वाले जो शहर हैं और राज्यों की राजधानी हैं उन्हें शामिल करो गए है, और दूसरे चरण में 10 लाख या वहाँ से ज़्यादा आबादी वाले जो शहर हैं उन्हें शामिल करो गए है। और जय योजना किसानों की कम कीमत प्राप्त से संबंधित जो समस्याओं है वह को व्यापक रूप से समाधान करें। ये किला ने कई तरह से उपाय करे जाएँ जिनमें अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे, वो नई और उन्नत किस्म की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवो, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ट्रेसिबिलिटी समाधान, सटीक खेती आदि जैसी जो आधुनिक तकनीकें हैं उनको उपयोग है प्रोत्साहित करवो को शामिल है। तो यह एक बड़ी अच्छी योजना है जो बड़े शहरों के आसपास में रहने वाले जो किसान हैं विवरण चाहें तो जा योजना को अच्छी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। भैया बहनों, जो एक बहुत दूर से चिट्ठी आई है, यह चिट्ठी लिखी है तीवरता डबरी पारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया जोगेंद्र और ग्राम अलगी डांड पाली से चंद्रपाल मरावी, ओम प्रकाश मरावी।

राम प्रकाश मरावी की और जो एक चिट्ठी है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धनथरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा सूर्यकांत राकेश शुभम शिखा और शेफाली की ग्राम सरखों नीला जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश

तो भैया वेनर देखो अब चलवे की हो रही है भैया, मैंने चलवे के पहले आप और कुछ जानकारी दे दें। कल सवेरे 6:45 पर कृषि चर्चा में डॉक्टर दिलीप जाट से अपन जानकारी सुने, खरीफ फसलों की तैयारी लाने जनवरी के लाने जरूरी कार्य। और इतवार को 31 मई को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम में अपन सुने आगामी खरीफ फसलों के लाने उर्वरक प्रबंधन और समसामयिक कार्य। जाके लाने जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं को समाधान चाहते हैं वे 31 मई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 या 2660903 पे फोन लगा के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और अब एक ही संग चलवे की बिरिया हुई तो लिए थे आप उन्होंने सुविधा। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया और बहनों को आनंद कृष्ण भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अंदाज फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अंदाज़ फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। और आइए कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब आपको सुनवाते हैं अजहर फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और अनंता मित्रा की। गीत को लिखा है मनोज यादव ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

0: का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
1: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं भाग मिल्खा भाग फिल्म से। आवाज़ है जावेद बशीर की, गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: यादें हमारी धरोहर है, यादें हमारे दिलों में बसती है, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती है।
2: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुनहरी यादें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पर आधारित है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं महेंद्र कुमार त्रिवेदी, पूर्व निदेशक अभियांत्रिकी आकाशवाणी सागर, और इनसे भेंट कर रहे हैं जय शिखर।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं एक बार फिर आपके साथ लेकर उन सुनहरी यादों को जो गुजरे हुए पल के साथ आपके साथ रहे हैं हमेशा से। उन 90 वर्षों का सफर जो तय किया है आपने अपने रेडियो के साथ। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेवानिवृत्त उप निदेशक आकाशवाणी सागर महेंद्र कुमार त्रिवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जय शंकर।
1: सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका सफर आकाशवाणी के साथ?
2: आकाशवाणी सबसे पहले तो हमने ज्वाइन किया था, तो आकाशवाणी में ही ज्वाइन किया था
1: जी।
2: लेकिन 3 साल काम करने के बाद हम दूरदर्शन चले गए। उसके बाद वहां से दूरदर्शन का हमारा सफर करीब 15-20 साल का रहा।
1: अच्छा अच्छा।
2: और 2004 में जब हम सहायक निदेशक बने, उस समय फिर से आकाशवाणी में आना हुआ।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो मलाड में सहायक निदेशक के पद पर हम करीब 6.5 साल रहे।
1: अरे वाह।
2: और वहां से ट्रांसफर होके फिर सागर आ गए
1: जी।
2: यहाँ भी आकाशवाणी में ही रहे और आखिरी तक
1: जी
2: आकाशवाणी से ही सेवानिवृत्त हुए।
1: अच्छा, हमें ये बताएं कि जब आपका चयन हुआ था आकाशवाणी में, वो दिन याद है आपको? किस प्रकार से आपकी पूरी प्रक्रिया चली थी और आपने कैसे उस खुशी को बांटा था अपने लोगों के साथ?

0: टाइमिंग काला चार बजे इंटरव्यू हुआ, चार बजे जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पे केंद्र निदेशक एक जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे वो, और तीन एमएससीटी के प्रोफेसर
1: जी,
0: और एक रंगाराव साहब थे वो जोनल ऑफिस से आए हुए थे। इन लोगों के बीच में हमारा इंटरव्यू हुआ और पांचों जनों ने काफी अच्छे तरह से इंटरव्यू लिया हमारा और 45 मिनट उस इंटरव्यू में गुजारे। एक मशीन के बारे में उन्होंने पूछा था, तो उसके बारे में हमने जब उनको बताया तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे वो कहने नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन हम कॉन्फिडेंस थे तो उनसे हमने ये कहा कि सर हम जो कह रहे हैं वो सही है।
1: अच्छा, अड़ गए आप?
0: हमने बिल्कुल ये बोला
1: जी
0: कि हम जो कह रहे हैं वो सही है।
1: हाँ।
0: थोड़ी देर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है।
1: हाँ।
0: लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुस्कुरा के हमसे बोले बेटा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है तुम्हारा
1: जी,
0: और ऑलमोस्ट जो हमारे आकाशवाणी के निदेशक थे उन्होंने ये कह दिया था कि तुम्हारा चयन तो निश्चित है।
1: हाँ।
0: लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते।
1: क्या बात है।
0: और ये करीब फरवरी में हमारा इंटरव्यू हुआ था और अगस्त में हमें सूचना आ गई थी और सितंबर में हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। तो आकाशवाणी छतरपुर के लिए हमारा ज्वाइनिंग,
1: पहली ज्वाइनिंग आपकी आकाशवाणी छतरपुर,
0: आकाशवाणी छतरपुर में 1 अक्टूबर 1981 को।
1: हाँ हाँ।
0: आकाशवाणी छतरपुर ज्वाइन किया
1: जी। छतरपुर के बाद किन किन केंद्रों पर आपने अपनी सेवाएं दी?
0: छतरपुर के बाद हमारा ट्रांसफर हुआ दूरदर्शन केंद्र सिंगरौली। और सिंगरौली देखा जाए तो किसी जगह का नाम नहीं है।
1: हाँ।
0: वहां क्या है कि एक एरिया है जिसमें मोरवी, दुदुचुआ, जयंत, बेड़हन, ये सब पूरे एरिया को मिला के वो सिंगरौली कहा जाता है
1: जी।
0: और पूरा कौडी एरिया है, कोयला बहुत निकलता है। जब हम वहाँ पे ज्वाइनिंग करने गए तो बस के साधन भी बहुत कम थे
1: जी।
0: हम इवन जब वहाँ पे गए तो हम कोयले के डंपर में बैठ के अपने स्टेशन तक पहुँचे।
1: क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात।
0: और फिर वहाँ पे जब हम पहुंचे तो वहां दूरदर्शन का कुछ भी नहीं था।
1: अच्छा।
0: केवल सामान पड़ा हुआ था।
1: हाँ हाँ।
0: और हमने जाके डिप्टी डायरेक्टर साडा को ज्वाइन किया।
1: अच्छा अच्छा।
0: उन्होंने बताया फिर कि वहां पे आपका सामान रखा है तो आपको वहीं जाना है।
1: एक ही आदमी थे आप वहां?
0: एक ही, मैं अकेला था
1: जी।
0: बाद में फिर
1: स्टाफ बढ़ता गया,
0: स्टाफ बढ़ता गया, इंस्टॉलेशन से मुंबई से आए लोग और उनके साथ मिलकर हमने बहुत काम किया
1: जी।
0: मतलब दूरदर्शन की शुरुआत जो हुई है।
1: हाँ हाँ।
0: कैसे काम करता है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: वो हमने पूरे सिंगरौली में ही देखे।
1: अच्छा अच्छा।
0: 82 में जब एशियन गेम हुए।
1: हाँ।
0: तभी से दूरदर्शन की शुरुआत हुई
1: जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही।
0: और कलर टेलीविजन जो आया था वो 1982 में ही आया था।
1: अच्छा अच्छा।
0: और ये जो सागर का दूरदर्शन आया था।
1: हाँ हाँ।
0: ये 1984 में आज यहाँ पे दो ही स्टेशन थे
1: जी,
0: दो मेंटेनेंस सेंटर थे।
1: हाँ हाँ।
0: एक सागर था और दूसरा बिलासपुर था।
1: अच्छा अच्छा।
0: अपने मध्य प्रदेश में अगले पहले सागर ही आया।
1: एक बात और बताना चाहेंगे सर कि हम जब भी किसी भी कर्मचारी अधिकारी से मिले तो ज्यादातर लोग ये कहते हुए सुनेंगे कि मैंने सागर से ज्वाइन किया है, तो मैं समझ नहीं पाता था कि जितने भी हैं सब सागर से ज्वाइन कैसे करते हैं।
0: नहीं, सागर में क्या हुआ कि 1984 में आए, उसके बाद साथ साथ से कई स्टेशन आए, मेंटेनेंस सेंटर सागर को डिक्लेयर किया गया था।
1: अच्छा अच्छा।
0: और यहाँ पे श्री आरसी मोदी।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: वो उपनिदेशक थे यहाँ पे।
1: हाँ।
0: उन्होंने बहुत काम किया है
1: जी,
0: उनके साथ रहने रहके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा।
1: क्या बात है, आप अपने गुरु समान मोदी जी को अभी भी याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा उन्हीं से सीखा।
1: अच्छा।
0: क्योंकि उनमें एक अच्छाई ये थी
1: जी
0: कि वो कभी भी किसी चीज से डरते नहीं थे।
1: हाँ।
0: कहते थे खोलो
1: हो जाएगा
0: और देखो।
1: हाँ।
0: जब नहीं होगा। हाँ। तो अपन

0: कंपनी में भेज देंगे।
1: बिल्कुल सही,
0: पहले अपन कोशिश कर रहे हैं,
1: हाँ
0: अगर हो जाता है तो अच्छा है,
1: हाँ
0: और नहीं होगा तो कंपनी में भेज देंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो इसलिए उनकी वो जो
1: जी
0: डेयरिंग थी,
1: हाँ
0: वो धीरे धीरे उसने हम लोगों को सिखाया भी, और हम लोगों भी में भी,
1: और हम भी
0: वही
1: गाई। बिल्कुल, हम वही बात बोलना चाहते थे कि आपके साथ हमारा भी बहुत ही अच्छा समय गुजरा है
0: जी,
1: लगभग 10-12 साल आपके हाँ, साथ काम किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वही चीज हमने आप में नोटिस की है कि हो जाएगा, शुरू कर दो इसको, हो जाएगा।
0: उसका की वजह यही है कि जो मोदी जी थे
1: जी जी,
0: और उनके साथ
1: जी
0: और
1: जी,
0: लोग भी हमारे साथ आए,
1: हाँ
0: जैसे जो टेक्निकली बहुत सक्षम थे, उन्हें भी उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, और हम लोगों ने अपने हाथ से काम किया, इसलिए वो डेयरिंग आई है।
1: अच्छा सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तकनीकी विभाग के प्रमुख के रूप में तो हम अलग बात करेंगे आपकी, लेकिन अगर ये देखा जाए कि आपने संपूर्ण आकाशवाणी को एक परिवार के रूप में देखा, आपने किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया, ना खुद ने किया ना होने दिया, आपने सबको समान अवसर दिए, कभी किसी की समस्या आई तो आपने ये नहीं सोचा कि तकनीकी विभाग से है या क्लेरिकल से है या प्रोग्राम से है, आपने सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तो ये प्रशासनिक गुरु कौन थे आपके जिनसे आपने इतना अच्छा काम सीखा?
0: प्रशासनिक गुरु वैसे तो कोई नहीं था, लेकिन हम मोदी जी को मानते हैं
1: जी,
0: क्योंकि जब हमने तकनीकी ज्ञान उनसे लिया,
1: हाँ
0: और मेंटेनेंस सेंटर में रहते हुए,
1: हाँ
0: हमने कई सेंटर पे अपने आसपास जितने भी एलपीटी दूरदर्शन के आए,
1: हाँ
0: उनके इंस्टॉलेशन से चलाने से और हरेक प्रशासनिक तौर पे और तकनीकी तौर पे दोनों ही तरह से हमने काम किया।
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आदरणीय त्रिवेदी सर से जो हम बातचीत कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन मतलब दूरदर्शन के जब प्रक्षेपण केंद्र आए थे यानी कि रिले सेंटर, तो उनकी स्थापना, उनमें लगने वाली मशीनें, उनके रूम्स, उनमें स्टाफ कैसे काम करेगा और कैसे वो पूरी मशीनें काम करेंगी, ये त्रिवेदी सर ने बखूबी देखा है। तो एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने विविध भारती मुंबई मलाड में भी बहुत वक्त गुजारा है, कैसा रहा आपका सफर?
0: मलाड का हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा
1: जी,
0: और वहाँ पे हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला
1: जी।
0: वहाँ पे 100 किलोवाट के
1: हाँ
0: दो ट्रांसमीटर हमारे चार्ज में थे
1: जी,
0: और उसमें कम से कम 20 आदमी,
1: अच्छा
0: 20 स्टाफ
1: हाँ
0: हमारे अंडर में था, तो हम लोगों ने एक टीम वर्क।
1: आपकी जिम्मेदारी क्या क्या होती थी वहां?
0: हमारी जिम्मेदारी प्रसारण निर्विरोध चलना,
1: बिल्कुल निर्वाध रूप से,
0: बिल्कुल निर्वाध रूप से चलना,
1: हाँ
0: ये हमारी
1: पहली प्राथमिकता
0: थी। बस उसको हम ध्यान में रखते हुए अपने स्टाफ को भी यही बोलते थे कि इसको चलना है और आपको इसको चलाना है, इसमें लगने वाले सभी उपकरण
1: हाँ।
0: जब भी हमारा टाइम ट्रांसमिशन खत्म होता था तो आपको सभी उपकरणों की मतलब उसको देखना है
1: हाँ।
0: और अगर कोई लगता था
1: हाँ।
0: कि ये प्रॉब्लम आ सकती है तो हाँ। उसको सुधारना भी था
1: जी।
0: और निर्वाध प्रसारण के लिए हम लोग।
1: अच्छा सर, हमें ये बताइए, इतने सालों का सफर रहा आपका आकाशवाणी में, तो कभी कोई ऐसी समस्या आ गई हो कि वो समझ में नहीं आ रही हो, प्रसारण चल रहा है, अचानक से कोई ऐसी समस्या आपके सामने आई हो कि अब आपको सूझा नहीं कि अब क्या किया जाए, या वो दूरदर्शन की घटना हो सकती है चाहे वो आकाशवाणी की, कोई ऐसी घटना याद आती है आपको?
0: बहुत घटनाएं हैं। छतरपुर में एक बार दोपहर का समय था
1: जी,
0: हम सागरी में थे और वहाँ से खबर मिली कि ट्रांसमिशन का ब्रेक डाउन हो गया
1: जी,
0: तो हम लोग इमीडिएट भागे यहाँ से
1: हाँ।
0: गए, जाके देखा, तकनीकी फॉल्ट बहुत छोटे होते हैं
1: हाँ, लेकिन
0: लेकिन उनका डायग्नोसिस
1: हाँ,
0: जैसे डॉक्टर करते हैं ना
1: जी,
0: वैसे ही आपको देखना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप
1: हाँ।
0: एक एक स्टेप से जाके, तो उसमें मॉड्यूलेटर जो है
1: हाँ।
0: वो मिसबिहेव कर रहा था
1: अच्छा,
0: और उसको हमने जाते ही पहले ही चेक

0: जब मैं देख लिया,
1: हाँ,
0: हमने उठा के दूसरा मॉड्यूलेटर डाला और ट्रांसफर थ्रू हो गया
1: जी।
0: उस मॉड्यूलेटर को बाद में लाके हम लोगों ने रिपेयर किया। तो ऐसा मलाड में भी हुआ था।
1: अच्छा,
0: मलाड में मुंबई ए और मुंबई बी,
1: मुंबई बी
0: उसकी ट्रांसमिशन लाइन करीब 1 किलोमीटर लंबी थी।
1: अच्छा,
0: उस लाइन में क्या होता था कि जो लाइव वायर होते थे और जो गार्ड होता था,
1: हाँ,
0: मतलब दूसरा ग्राउंडेड वायर होता
1: जी,
0: था
1: जी,
0: उसके थ्रू जाता था, लेकिन उनके बीच में गैप कम हो जाता था अगर कोई पक्षी बह।
1: अच्छा,
0: तो उस ट्रांसमिशन लाइन को हमने टेकअप किया, हमारे जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे,
1: हाँ हाँ,
0: उनसे परमिशन ली
1: जी,
0: हमने जोनल ऑफिस से परमिशन ली
1: जी
0: कि इसको हम काम करेंगे और इसको स्टैंड बाई जो हमारा दूसरा छोटा ट्रांसमीटर था,
1: हाँ हाँ,
0: उस पे लेके हमने काम किया।
1: हाँ,
0: और ये 1 किलोमीटर की लाइन हम लोगों ने करीब 2 दिन में
1: ठीक कर दी,
0: पूरी रिपेयर करके और थ्रू किया
1: जी।
0: और ये घटना 26 मई की है जिस दिन बहुत बारिश हुई थी।
1: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ,
0: और हम लोग जब 3 बजे के आसपास हम लोगों ने काम किया और उसके बाद ये बारिश हुई।
1: हाँ हाँ,
0: उसके बाद ये कम से कम 5 फुट पानी में हम लोगों ने जाके और अपना काम खत्म किया। दूसरे दिन उसको लाइन को टाई अप किया और उसके बाद जो हमारे मास्टर टेक्नीशियन थे
1: जी,
0: उनसे काम करवा के और लाइन को थ्रू किया। तो ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि आप तक निर्बाध रूप से प्रसारण पहुंचता रहे, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पूरी आकाशवाणी टीम को।
0: जब हम लोगों ने ये लाइन ठीक की,
1: हाँ,
0: तो हमने हमारे मीडियम के सभी कर्मचारी मौजूद थे।
1: अच्छा अच्छा,
0: और वो कर्मचारी इतने डेडिकेटेड थे,
1: हाँ हाँ,
0: कि उन्होंने अपने इस काम के लिए पूरा सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक एक दिन काम किया और दूसरे दिन ये बारिश हो गई, लेकिन हमने दूसरे दिन लाइन थ्रू की
1: जी,
0: मतलब तीसरे दिन,
1: हाँ,
0: सवेरे से हमने लाइन थ्रू कर दी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसमें हमारे सभी जो स्टाफ मेंबर थे सभी का सहयोग बहुत
1: जबरदस्त रहा
0: और इसमें काम करने के लिए जो भी वहां पे अभियांत्रिकी का सहायक थे, वरिष्ठ अभियांत्रिकी के सहायक थे, एई थे, हम लोगों सभी ने मिलकर काम किया और फील्ड में रह के काम किया।
1: इसकी सराहना भी खूब हुई होगी आप लोगों की।
0: सराहना हुई बिल्कुल, क्योंकि वो काम करीब 20 साल से ऐसे ही पड़ा था।
1: अच्छा अच्छा,
0: और उसमें आए दिन फॉल्ट आते रहते थे, लेकिन हम सब ने लग के काम किया, उसके बाद उसमें फॉल्ट आना बंद हो गए। तो कम से कम हम लोगों को ये रहा कि वो लाइन जो थी फीडर लाइन,
1: हाँ हाँ,
0: वो पूरी तरह से रिपेयर हुई।
1: अच्छा, इस दौरान जब आपने सफर की शुरुआत की दूरदर्शन से, आकाशवाणी से, तब से लेकर आज तक तकनीकी रूप से कितने परिवर्तन हुए और वो आपके सामने ही होते रहे, तो उनको कैसे आपने समझा और कैसे उनको परिवर्तित किया?
0: जब हमने आकाशवाणी ज्वाइन किया था
1: जी,
0: उस समय तो केवल मीडियम वेव और आपके शॉर्ट वेव
1: जी,
0: दो ही ट्रांसमीटर, हाँ, होते थे, लेकिन
1: हाँ हाँ
0: 82 के बाद
1: जी
0: ये FM का दौर था
1: जी जी जी,
0: दूरदर्शन का दौर आया
1: जी जी,
0: और दूरदर्शन के दौर के बाद
1: जी
0: करीब 90s में ये FM आया अपना।
1: अच्छा अच्छा,
0: 90 के दशक में ये, हाँ, FM की शुरुआत हुई। तो FM आया तो प्रसारण तो वैसे ही होता है,
1: हाँ हाँ,
0: मीडियम वेव में भी वैसे ही होता है और शॉर्ट वेव के लिए भी वैसे ही होता है, केवल तकनीकी चेंज हो जाते हैं,
1: हाँ, और गुणवत्ता प्रभावित होती,
0: गुणवत्ता प्रभावित होती कि क्या होता था कि मीडियम वेव जो होता है उसको आप डिस्टेंस ज्यादा कवर कर सकते,
1: हाँ,
0: लेकिन उसमें नॉइज भी
1: बहुत
0: ज्यादा होती है।
1: यानी श्रोताओं, आपको याद होगा जब मीडियम वेव और शॉर्ट वेव आप सुनते होंगे, मैं भी सुनता था जब, तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा बंद कर दिया जाए, सरसराहट, खरखराहट, एक स्टेशन लगी आप अचानक से दूसरी स्टेशन टकरा जाती थी, कोई गाना आ रहा बीच में रुक जाता था या एकदम से तेज हो जाता था। तो सर जो बता रहे हैं कि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव में ये समस्याएं आती थी, फिर FM में जो टेक्नोलॉजी आई

0: से ये सारी गायब हो गई।
1: हाँ, ये एफएम में क्या हुआ कि इसमें प्रसारण जो होता है और हम लोग जो आप अपना टावर देखते हैं,
0: जी जी,
1: टावर के सबसे टॉप पे
0: हाँ
1: एंटीना लगाया जाता है और इसका प्रोपोगेशन जो होता है
0: जी
1: वो लाइन ऑफ साइड होता है, मतलब जहां तक वो जा सकता है।
0: हाँ,
1: अगर सामने कोई अवरोध आया
0: हाँ
1: तो उसके उस तरफ जाने में उसको प्रॉब्लम होगी और वहां आपको सिग्नल नहीं मिलेगा।
0: हाँ,
1: लेकिन मीडियम वेव और शॉर्ट वेव में ये स्काई वेव के थ्रू प्रोपोगेशन होता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: इसलिए वो दूरियां
0: तय कर लेता था,
1: तय कर देती थी।
0: जी जी,
1: और एफएम में यह लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन होता है, उसकी वजह से।
0: अच्छा सर, एक चीज और हमने नोटिस की है कि मान लीजिए किसी मौसम में हमारा प्रसारण बहुत दूर तक चला जाता है, पहाड़ हैं बीच में, बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन वो दूर तक जाता है जब बादल होते हैं या फिर कोहरा छाया रहता है, और जब ये छट जाता है तो फिर से प्रसारण रुक जाता है वहां तक का, इसके पीछे क्या कारण है?
1: उसके पीछे कारण ये होता कि अगर मौसम में नमी आती है तो प्रसारण ज्यादा लंबी दूरी का
0: क्या बात है,
1: और उसके बाद अगर धूप निकलती है
0: हाँ
1: और उसकी वजह से वो नमी खत्म हो जाती है
0: हाँ
1: तो प्रसारण फिर पहले जैसा।
0: अच्छा, एक जिज्ञासा और मन में आती है कि यहां से लेके बहुत दूरी कवर कर लेता है हमारा आकाशवाणी, लेकिन एक जगह हमने ऐसी चुनी है कि जहां पर जाते ही आकाशवाणी का प्रसारण बंद सा हो जाता है, वो है बीना। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप?
1: बीना के पीछे एक कारण
0: जी,
1: ये ठाकुर बाबा की जो पहाड़ी है,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: वो पहाड़ी काफी ऊंची है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपना टावर है
0: हाँ
1: यहाँ से प्रोपोगेशन होता है,
0: हम्म,
1: वो पहाड़ी में टकरा के ऊपर या नीचे ब्लॉक होता है।
0: हाँ, हाँ,
1: तो बीना का कुछ पोर्शन
0: हाँ
1: जैसे हम एंट्रेंस करते हैं खुरई और बीना के बीच,
0: हाँ यानी खुरई तो पूरा लेगा,
1: खुरई पूरा लेता है
0: जी,
1: और जहाँ पे बीना का ये सब स्टेशन है
0: जी
1: बिजली विभाग का
0: जी,
1: वहां से और सर्वोदय चौराहा
0: हाँ
1: इसी बीच में उस पहाड़ी की वजह से ये पोर्शन इफेक्टेड है।
0: अच्छा अच्छा,
1: इसीलिए उसकी वजह से
0: जी
1: कुरवई में
0: हाँ
1: दूरदर्शन आया था
0: हाँ,
1: और दूरदर्शन और वहाँ अभी भी एफएम चल रहा है
0: जी
1: शायद
0: हाँ,
1: और वो उससे कवर कर रहा है।
0: क्या बात है। अच्छा सर, आकाशवाणी सागर के कार्यकाल के बारे में बताइए, हम सबके बारे में बताइए, कैसा रहा यहाँ आपका सफर?
1: एक तो पहली बात यह है कि सागर आकाशवाणी को हमने अपने परिवार की तरह ही माना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: और इसमें यहाँ पे जो भी रहे
0: हुँ.
1: जो भी स्टाफ हमारे साथ रहा है
0: हाँ.
1: उनके साथ रह के हमने गुणवत्ता
0: हाँ.
1: वाला प्रोग्राम
0: जी
1: बने और श्रोताओं तक पहुंचे
0: जी,
1: ये हमारी प्राथमिकता रही है
0: जी,
1: और इसी वजह से हमारा यहाँ सागर का कार्यकाल, सागर में हम दूरदर्शन में भी काफी लंबे हाँ, समय हाँ, तक रहे और उस दौरान भी हमने बहुत काम किया
0: जी,
1: क्योंकि जो भी एलपीटी सराउंडिंग में थे
0: हाँ, हाँ,
1: क्योंकि ये मेंटेनेंस सेंटर था
0: हाँ, हाँ,
1: और सागर टीबीएमसी भी होने के कारण यहाँ पे इसके अंदर बहुत से सैटेलाइट बल्दे, फिर उसमें मैं ये डिस्को ट्रैक करना, फिर कहीं जाके और करना, तो ये हर स्टेशन पर जाके कर काम करना, और यहाँ आकाशवाणी में जब से आए मैं 2 जुलाई 2010 को आ गया था और 31 जुलाई 2019 को सेवानिवृत्त हाँ, हो गया, लेकिन इन 9 सालों में हमने इस स्टेशन को
0: जी
1: प्राथमिकता इसलिए दी क्योंकि ये हमारा लोकल स्टेशन था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और यहाँ के स्टाफ को भी यही प्रेरणा देते रहे
0: जी
1: कि वो भी अपने तन मन धन से जितनी सेवा कर सकते हैं उतना अच्छा प्रोग्राम बनाएं, और प्रसारक के लिए तो हम बैठे ही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो हमारे स्टाफ को भी अपना जो तकनीकी स्टाफ था
0: हाँ,
1: उसके लिए भी हम मोटिवेट करते रहे
0: जी,
1: और ऐसा लगता है
0: जी
1: कि हम अपने लक्ष्य में
0: हाँ
1: लगभग पूरी तरह कामयाब।
0: क्या ये सबसे बड़ी बात है किसी इंसान के जिस जॉब में है और जहां पर वो उसका घर भी है, लोकल है, और लोगों की उम्मीदें उस व्यक्ति से ज्यादा जुड़ जाती हैं, और ऐसे में अगर वो अपने टारगेट को अचीव कर ले, अपने लक्ष्य को पाले, सबसे बड़ी है।
1: बिल्कुल।
0: अब हमें ये बताएं कि आजकल आपका वक्त कैसे गुजरता है?
1: अभी भी हमारा रूटीन वही है, ऑफिस के रूटीन।

0: के हिसाब से हम सवेरे 6 बजे उठ जाते हैं,
1: हाँ,
0: और 10 बजे हमारा खाना हो जाता है।
1: अच्छा।
0: आराम से बाकी थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं,
1: हाँ हाँ,
0: टीवी में न्यूज वगैरह सुन लेते हैं, और दोपहर में चाय होती है जिसके साथ कुछ स्नैक्स होता है, और शाम को 7 बजे फिर से खाना हो जाता है, और शाम के टाइम हम करीब 2-3 किलोमीटर
1: वॉक कर लेते हैं। अच्छा, एक शौक के बारे में हमें आपका पता है कि आपको कार चलाने का, लंबी दूरी तय करने का बहुत शौक रहा है, क्या वो अभी हो पाता है कि कहीं बाधाएं आई हैं?
0: अब तो बाधा आ गई है
1: जी,
0: लेकिन कार चलाने का शौक हमारा शुरू से रहा
1: जी।
0: मतलब हम बंबई के एक कार्यकाल के दौरान
1: जी
0: 3 बार अपनी कार हम मुंबई से अपने घर तक आए,
1: हाँ, और वो भी एक निश्चित समय के अंदर।
0: निश्चित समय के अंदर तो हमारी शौक तो बहुत रही है, जब से पहला ही शिशु हुआ,
1: हाँ हाँ,
0: तब से इस शौक में कमी आई है
1: जी जी,
0: लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और हम पुनः गाड़ी चलाने
1: जी। तो श्रोताओं, ये था एक छोटा सा सफर पूर्व उप निदेशक आकाशवाणी सागर महेंद्र कुमार त्रिवेदी जी से। ये मुलाकात आपको कैसी लगी और ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये हमें जरूर बताइए हमारे व्हाट्सएप पर और खतों के माध्यम से। त्रिवेदी सर, आप अपने स्टूडियो आए और आपने बहुत ही अच्छी यादें हमसे बांटी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सुनहरी यादें, आकाशवाणी के 90 बरस। आज इस कार्यक्रम में मेहमान थे महेंद्र कुमार त्रिवेदी और उनसे बातचीत कर रहे थे जय शिखर। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में, और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार

0: دلی کیٹ ناشکوں کے خلاف کڑی کاروائی کر رہی ہے.
1: سب نے مل کے یہ طے کیا ہے کہ جو گھٹیا پیسٹیسائڈ ہے وہ ایک بڑی سمسیا ہے. بیج بھی گڑوتا پورن ملے اور گھٹیا پیسٹیسائڈ, اس پر جتنے سیمپل اٹھانا چاہیے اتنے سیمپل اٹھائیں. لیبس کئی راجیوں میں ہیں لیکن ان کو پرفیکٹ کرنے کا کام کریں. این اے بی ایل پرمانت لیب ان راجیوں میں ہو, اس پر بھی ویاپک پیمانے پر چرچا ہوئی ہے. ہم لوگ اس پر بھی نکلی کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے, ویاپک ابھیان چلایا جائے.
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है. सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की.
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है. इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें. बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें.
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है. म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी. भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है. भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही. दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की. बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफिया

0: बच्चों की हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की

0: पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात्रि के 9 बजे हैं। श्रोताओं, समय है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन चाहे गीत का। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं आपके पत्रों के साथ और आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों के साथ। तो कार्यक्रम की ये पहली फरमाइश हम ले रहे हैं जो हम तक पहुंची है संबलपुर काकीर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश भेजने वाले श्रोतागण हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीवा और दानिश अंसारी की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म कोरा कागज का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं एमजी हसमत और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली।

और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं वारिस फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की। गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत है उत्तम सिंह का। इस गीत को सुनने का अनुरोध हमें भेजा है ग्राम भोईनापार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देव नारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल, रानी साहू, उमाबाई और गंगाराम साहू ने। थाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे की वर्ष फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से लिखने वाले हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भावेक सिक्का। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं वारिस फिल्म का ये गीत।

अगली फरमाइश के लिए ये पत्र हम तक पहुंचा है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडाबीले जिला सागर से। लिखने वाले हैं लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार का। इसी गीत को सुनने का अनुरोध हमें व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त हुआ। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़ जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश मिली है सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वैदेही जोशी और बेबी हंसिका जोशी। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई तहसील सिल्लोड़ जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से ये फरमाइश मिली है अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के की। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है असद भोपाली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।

श्रोताओं, कार्यक्रम मंचाहे गीत में ये अगली फरमाइश हमें मिली है मलोट पंजाब से। लिखने वाले हैं सतीश मिगलानी, अनमोल मिगलानी, विवान महावीर और संधु। शिवाजी चौक कटनी से ये फरमाइश है अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा की। हनुमानगढ़ राजस्थान से ये फरमाइश मिली है रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान की। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, बाबू प्रियांश और कुमारी भाव्या देवांगन की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं तुम बिन फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की। गीतकार हैं फैज़ अनवर और संगीत दिया है निखिल विनय ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और श्रोताओं अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश जो हमारे इन सभी श्रोताओं ने हमें लिखकर भेजी है। गांधीनगर गुजरात से ये व्हाट्सएप फरमाइश मिली है सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा की। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। भवरपुर छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश है राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू देवांगन, नेहा देवांगन और जगदीश देवांगन की। दतरेंगी से भागवत वर्मा, रुद्र वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता की व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है। और ये पत्र हमें मिला है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर और प्रणीता गवाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, श्रीमती वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर, परी का ये पत्र हम तक पहुंचा है। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत की आखिरी पेशकश, कसूर फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: कसूर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं

0: तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर है आज के फनकार।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था लेकिन काफ़ी मेहनत और काफ़ी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो ज़िंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफ़र थिएटर और टेलीविज़न और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला, वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था, या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40s की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़े मजा आए।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में, बंगाली में बना चुके हैं, और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं, और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में। ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही, और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया, जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे वो मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है आहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तरनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा ज़रूर मैं आप बताना चाहूँगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं, और उस वो बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। और तो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे 2 फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें-6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहाँ हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे, और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। और जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहां लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए, और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन एक फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था। अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है, जो जिंदगी भर याद रहे।
0: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की 3 फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते ही हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर छाया गीत का कुछ ही पलों के इंतजार के बाद

गाया गीत के सफर में आज बातें अफसानों की। ये वो मोहब्बत के अफसाने हैं जिनमें कभी सुकून मिलता है तो कभी मिलती है तड़प, कभी मिलन है तो कभी जुदाई। कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं,

तो कभी देते हैं दर्द की पुकार, पर जो भी है हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल खुद तो कभी पूरी की पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

हम चल रहे थे राह जिंदगी पर अकेले और खामोश, तुम क्या मिले राही बनकर कि जिंदगी को एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी। कोरे कागज जैसी जिंदगी पर जो अफसाना तूने लिख डाला, अब उसे ही तो ताउम्र पढ़ते जाना है हमें।

हमारे सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबा रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम ही बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

को खबर न मिले, समझने वाला समझ ले। ये भी अंदाज है इस बात के इजहार का, हमेशा यहाँ

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती

रातों की बातें तो कभी बिखरी जुल्फों और काली घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी गलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी शमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है, और तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

ये अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें, इसमें है बचपन की दोस्ती जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग चढ़ा। बिना बात के वो रोटना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं पढ़ना, सावन के वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हसीन यादों से ही तो बनता है हमारा ये छोटा सा प्यार भरा अफसाना।

ये दिल लिखता तो चला जाता है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल पा ही लेता है मोहब्बत का ये प्यारा सा अफसाना, जो धड़कता है हर दिल में।

इंसानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: ये है विविध भारती देश की
1: समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD News को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।